आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीटिंग 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर आज रविवार

कृषक संघ 1948 आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून 2026 प्रातः के समय 5:57 होने को है। हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम है 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया

0: चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के इस समय 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज का विचार। विषय है सद्पुरुष। वाचक स्वर श्री विश्वनाथ मिश्र का है। तो आइए सुनते हैं आज का विचार सद्पुरुष।
2: रेल की दो पटरियों की भांत सज्जन और दुर्जन का बहुत पुराना साहचर्य है। ये दोनों अनादि हैं। यदि ऐसा भी कहा जाए तो कोई असंगति नहीं है। दिन और रात, सुख और दुख, पुण्य और पाप की भांति सुजनता और दुर्जनता का द्वंद भी अनादि ही है। कहा जाता है कि देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत की भांत जहर भी निकला था। और निकले भी क्यों नहीं, जब मंथन करने वाले ही परस्पर विरोधी थे तो उनके कर्मों का विपरीत परिणाम क्यों न हो। फलस्वरूप अमृत के साथ जहर का भी अस्तित्व संसार में हुआ। अमृत का संबंध सज्जन से है तो विष का संबंध दुर्जन से। दुर्जनों की उपमा उस नारिकेल से दी गई है जो बाहर से देखने में तो रूखा सूखा लगता है किंतु उसके भीतर मधुर एवं शीतल जल रहता है। दुर्जन की उपमा उस बेर के फल से दी गई है जो बाहर से चिकना चुपड़ा और मनोहर दिखाई पड़ता है किंतु उसके भीतर कठोर गुठली होती है। जहाँ सज्जन व्यक्ति कृतज्ञ, परोपकारी, मितभाषी और मृदुभाषी होता है, वहीं दुर्जन कृतघ्न,

0: अनिष्टकारी और कटुभाषी होता है। सज्जन के कोप का उतना भय नहीं होता जितना दुर्जन की मित्रता का भय। इसीलिए रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही खलबंदना की। उन्हें भय था कि मेरे इस कार्य में खलमंडली द्वारा अकारण विघ्न न पैदा कर दिया जाए। वे कहते हैं, बहु रिबंध खल गण सति भाए जे बिनुकाज दाहिने बाएं। महाकवि बाण भट्ट अपनी कादंबरी के आरंभ में लिखते हैं, अकारणा विस्कृत पैर दारुणात असज्जनात कस्य भयम न जायते। अर्थात बिना मतलब बैर करने वाले दुर्जनों से किसे भय नहीं होता। सज्जन व्यक्ति दोष में भी गुण देखता है, उसके मुख में आकर दोष भी गुण बन जाते हैं। इसके विपरीत दुर्जन के मुख में गुण भी दोष रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सज्जन और दुर्जन के व्यवहार में यही अंतर है कि सज्जन दोषों को भी गुण मानकर उसके अनुकूल व्यवहार करता है, वह दोषों में भी गुण खोजता है, किंतु दुर्जन का स्वभाव ऐसा होता है कि वे गुणों में भी दोष का दर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए मेघ व सर्प का दृष्टांत प्रस्तुत है। मेघ समुद्र का खारा पानी पीता है और उसे मीठा करके प्राणी मात्र के लिए प्रस्तुत करता है। उसका जीवन ही संसार के तर्पण के लिए है। इसके विपरीत सर्प दूध पीते हैं और उसे भयंकर विष के रूप में उगलते हैं, जो सबके लिए प्राणांतक होता है। सांप को कितना भी दूध पिलाइए, यह अपने विश्रवण का स्वभाव नहीं छोड़ता। इसी प्रकार दुर्जन भी भले के बदले अहित ही करता है, उसकी भावना सदा खराब ही रहती है। एक दुष्ट एक बार जंगल में घूम रहा था। एक सज्जन ने उसे पूछा, भद्र तुम कौन हो? दुष्ट ने उत्तर दिया, मैं दुष्टों का स्वामी, उनका अग्रणी नेता हूँ। फिर प्रश्न हुआ, आप इस जंगल में क्यों विचरण कर रहे हैं? खलेश्वर ने कहा, सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशु मुझे खा जाए, इसीलिए यहाँ घूम रहा हूँ। सज्जन ने पुनः पूछा, आपने इतना भयंकर निर्णय क्यों लिया है? सभी लोग तो मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो तुम मरना क्यों चाहते हो? खलेश्वर ने कहा कि मैं स्वयं मृत्युमुख में इसलिए जाना चाहता हूँ कि सिंह आदि हिंसक प्राणी जब मुझे खाएंगे तो उन्हें मानव के मांस को खाने की आदत पड़ जाएगी और ये संसार के समस्त मनुष्यों को खा जाएंगे। संसार के मनुष्यों का नाश ही मेरा उद्देश्य है। कितना घृणित और कुत्सित था उसका विचार। अतः ऐसे व्यक्ति से सावधान और जागरूक रहना चाहिए। खल व्यक्ति यदि विद्वान भी है तो उसका परित्याग वैसे ही कर देना चाहिए जैसे मणिधर सांप का परित्याग दूर से ही कर दिया जाता है।
1: ये था आज का विचार। विषय था सद्पुरुष। वाचक स्वर था श्री विश्वनाथ मिश्र का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के समय 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वंदना।

ये स्वर थे सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा के। आइए अब सुनते हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: सुरेश वाडेकर, सीमा मिश्रा और साथियों को अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना हम आपको सुनवाते हैं सीमा मिश्रा के स्वर में।
1: मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया।
2: ओरी मैया सुन,

ये स्वर था सीमा मिश्रा का। इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 192 से दोहा संख्या 194 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है। तो आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे।

जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गऊएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से

कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज आपने बालकांड के दोहा संख्या 192 से दोहा संख्या 194 की अंतिम चौपाई तक का पाठ सुना। संगीत सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। आठ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हेल्दी बीकाना। ये कार्यक्रम गुप्ता डेंटल क्लिनिक व इम्प्लांट सेंटर द्वारा प्रायोजित है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, दांतों के इलाज में आधुनिक तकनीक का उपयोग विषय पर डॉक्टर अंबुज गुप्ता से श्रीमती बरखा थानवी व्यास की बातचीत। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की रहेगी, संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। हेल्दी बीकाना 8:30 पर। सात बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। सुगम संगीत 8:45 पर। पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाता है 9:10 पर। आज रविवार है, बच्चों को इंतजार होता है कार्यक्रम मुकुल का। 9:30

कैबिनेट पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा मुकुल, चर्चा के विषय होंगे छोटे कदमों से प्रकृति में बड़ा बदलाव, कहानी अन कही कहानियां, कविता पाठ तपता सूरज, अलावा इसके रोचक जानकारी दी जाएगी। श्रोताओं, आज हम आपको 10:55 पर मन की बात कार्यक्रम सुनवाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। जी हां, मन की बात कार्यक्रम 10:55 पर दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होता है महिला जगत, 1:05 पर। चर्चा के विषय आर्थिक आजादी, हर महिला का अधिकार, लखपति दीदी योजना, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सावधानियां। एक वार्ता सुनाई जाएगी, महिलाओं में वित्तीय साक्षरता आज की आवश्यकता। वार्ताकार होंगी श्रीमती गुंजन चौपड़ा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की रहेगी और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। आज का ही कार्यक्रम लेकर आएंगी रेखा आचार्य और सपना व्यास। 1:05 कार्यक्रम महिला जगत। पर आप सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज की बात, सामुदायिक योग से लाभ, लघु जानकारी में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जंतर मंतर, अलावा इसके रोजगार समाचार और क्यूज टाइम होगा। आज का कार्यक्रम लेकर आएंगी कुमकुम स्वामी और गौतम गॉड। श्रोताओं, शाम 7 से हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। जी हां, समय याद रखिएगा, शाम 7 से।

0: ये था कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है पर्यावरण हितेशी बाजरे की खेती। वाचक स्वर श्री अश्वनी व्यास का है।
1: किसान भैया राम राम। पर्यावरण हितेशी बाजरे की खेती। बाजरो एक ऐसी फसल है जिको किसाना ने विपरीत परिस्थितियों में भी, सीमित वर्षाला क्षेत्र में भी और बहुत कम उर्वरक की मात्रा रे साथ भी अन्य फसलों से चोखो उत्पादन दे सके। बाजरे जी की फसल है वो गरीबारो मुख्य स्रोत भी है, जिके में ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल आदि भरपूर मात्रा में पाया जावे। आज रे समय में आपा मोटे अनाज री बात करा, बार बार मोटे अनाज रे बारे में सुना, तो बाजरो भी मोटे अनाज रो एक अच्छो अंग है और एरो प्रयोग आपा सर्दी में करा तो आपने सर्दी से बचाव करे और गर्मी में राबड़ी आदि रे रूप में करा तो गर्मी से भी आप बचाव करे। बाजरो सूखे और अर्ध शुष्क क्षेत्र रे मायने मुख्य रूप से उगायो जावे और ईरे क्षेत्र में दाणो और चारे रो मुख्य स्रोत मान्यो जावे। सूखो सहनशील होने रे कारण और कम अवधि री फसल मुख्य रूप से 2 और 3 महीना री बाजरो है, जिको लगभग सभी प्रकार री भूमिया में उगायो जा सके। बाजरो क्षेत्र और उत्पादन वास्तर एक महत्वपूर्ण फसल है, जठे 500 से 600 मिलीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होवे भी शुष्क इलाका वास्तर बाजरो सबसे उपयुक्त मान्यो गयो है। बाजरे रो आटो विशेषकर भारतीय महिलाओं वाले मायने खून रिजी की कमी है वह पूरा करने रो एक सुलभ साधन भी है और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में महिलाओं और बच्चा में जिके लोह तत्व की कमी होवे, जिके वास्तर आयरन री दवाइयां दी जावे और सागे सागे मिनरल मतलब खनिज लवण रिजी की कमी होवे बिने भी वो बाजरो पूरा करे। बाजरे रे दाने में ज्वार

0: अच्छी गुणवत्ता रा पोषक तत्व पाया जावे। बाजरे रे दाने में 12.4% नमी, 11.6% प्रोटीन, 5% वसा, 76% कार्बोहाइड्रेट, बीरे सागे सागे 2.7% मिनरल भी पाया जावे है। बाजरे रे दाने ने चावल रे आले जो पकार या चपाती बनार भी आप प्रयोग कर सका। इन्हें मुर्गियों रे आहार और पशुओं रे हरे चारे रे सागे सूखे चारे वास्ते भी उपयोग करो जा सके है। बाजरे की फसल जी की है बात तेजी से बढ़ने वाली गर्म जलवायु वाली फसल है, जी की 40-70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उपयुक्त रहे। इनमें सूखो सहन करने की अद्भुत शक्ति होवे। मान लो अगर बरसात नहीं भी हो पाई और अपना जी का गर्म इलाका है बियाने वास्ते आ एक वरदान है। फसल वृद्धि रे समय नम वातावरण अनुकूल रहे, सागे ही फूल अवस्था पर वर्षा रो होनो इरे वास्ते हानिकारक होवे, क्योंकि वर्षा रे परागकण घुल जाने सो इमे जिकी वालियां है वे कम दाना देवे। साधारण रूप से बाजरे जिको भी क्षेत्र में उगायो जावे चठे ज्वार रो ज्यादा तापमान और कम वर्षा में उगनो संभव नहीं हो पावे। बाजरे री अच्छी बढ़वार रे वास्ते 20-280 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त मान्यो गयो है। बाजरे रो बीज जिको है वो बारीक होने के कारण खेत में अच्छी तरह से तैयार करनो जरूरी है। एक गहरी जुताई रे बाद 2-3 बार हल से जुताई कर खेत ने समतल कर लेनो है, जिके सु खेत में पानी नहीं रुक सके। सागे ही पानी री निकासी री भी आपने उचित व्यवस्था करनी है। बुवाई रे 15 दिन पहला 10-15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ोड़े गोबर री खाद आपने खेत में घाल और हल सु बने भली भांति मिट्टी में मिला देनो है। दीमक रे प्रकोप री संभावना होवन पर प्रति 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्लोरोपाइरीफॉस 1.5% चूर्ण खेत रे मायने मिलानो है। फसल चक्री अगर आप बात करा तो बाजरो जौ, बाजरो गेहूँ, फिर बाजरो चनो, बाजरो मटर, फिर बाजरो सरसों आदि रा फसल चक्र है। वर्षा रे प्रारंभ होते ही जुलाई रे दूसरे सप्ताह तक इरी कतार में बीज ने 2-3 सेंटीमीटर गहराई में बो देनो चाहिए। लाइन सु लाइन 45 सेंटीमीटर और पौधे सु पौधे री दूरी 10-15 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी गई है। तो बाजरे री फसल किसान भाइयों वास्ते एक वरदान है।
1: ये था कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय था पर्यावरण हितेशी बाजरे की खेती। वाचक स्वर था श्री अश्वनी व्यास का। आइए अब सुनते हैं एक लोक भजन। स्वर है अभय सिंह गहलोत का।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक भजन, स्वर थे अभय सिंह गहलोत और साथियों के। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35.1 संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रीय सभां संबोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमंत्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रीय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मंत्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः

0: द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्री मोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं संप्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह संपर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता संबद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के इस समय 7 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम सुप्रभात का।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को महेश उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। सुबह का यह समय बहुत ही शांत और मन को भाने वाला होता है, और अगर हम अभी 7 बजे से पहले की अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय, जी हां, जिसको अमृत काल भी कहते हैं। और उस समय अगर हम हमारे आसपास की प्रकृति के जो घटक हैं उनको हम देखें, उनसे बातें करें, जी हाँ, थोड़ा सा भावना में बहना पड़ेगा, काल्पनिक होना पड़ेगा, तब हम हर चीज से बात कर सकते हैं, तभी हम उस अमृत काल का आनंद ले पाएंगे। और सिर्फ आनंद ही नहीं है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के भी वो समय सबसे उचित बताया गया है। इसीलिए सुबह जल्दी उठना और रात को समय से सोना,

यह स्वास्थ्य की पहली कड़ी है या पहला पाठ है। और अब भी यह सुबह बहुत ही हमें सुहानी लगती है। आइए सुनते हैं पहले ये गीत, फिर बातें करेंगे बहुत सारी।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: जी बिल्कुल, हम भी स्वास्थ्य की बात कर रहे थे आपसे, सुबह जल्दी उठना और समय पर सोना। इसके अलावा योग और ध्यान अगर हम कर लें तो फिर ये तय है कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने हैं, किसी भी डॉक्टर के से अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये करना जितना बोलना आसान है उतना शायद करना कठिन है। हालांकि करना कठिन भी नहीं है, लेकिन समस्या हमारी क्या है कि सरल काम हम करते नहीं हैं, सामान्य काम हम करते नहीं हैं, और उसी से हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। कहते हैं कि आसान काम करना कठिन होता है। सहज रहना, जिस प्रकार मन को शांत रखना, सहज रहना, सामान्य रहना कठिन है, लेकिन करके देखेंगे तो उसका परिणाम भी हमें बहुत जल्दी मिलेगा। यह सब कुछ हो सकता है, बस हमारा मन ये कहे कि मैं कर सकता हूं, मुझे करना है। फिर देखिए चमत्कार आप, क्योंकि मन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे देश के विकास की, देश के निर्माण की, जहां पर हम देखते हैं कि गरीब कल्याण जो योजनाएं हैं हमारी, गरीबों के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी हमारी योजनाएं जो कि सरकार की तरफ से संचालित की जाती है, जैसे शिक्षा की शुरुआत, जिसमें एक चर्चा हम करेंगे पीएम श्री स्कूल की, अलावा उसके गरीब के घर राशन पहुंचा, कौशल से आत्मनिर्भरता जिसे हम स्किल इंडिया के नाम से जानते हैं, महिलाओं की अगर हम बात करें तो लखपति दीदी योजना, डिजिटल क्रांति की बात करें तो जन आधार, मोबाइल की, मोबाइल से जुड़ी भी सभी वो बातें जो आपको बहुत आसान बनाती है आपके दैनिक कार्यों में। तो अगर हम ये कहें कि हमें देश का निर्माण करना है, देश का विकास करना है, तो हमें सबसे पहले अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसका विकास करना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का उदय। जब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति कहेगा मेरा भी देश है, मैं देश का हूं, तभी तिरंगा सबसे ऊंचा लहराएगा। श्रोताओं, आपसे बातें जब हम करते हैं तो यूं लगता है कि बस करते ही जाएं। हालांकि हमें स्टूडियो की घड़ी को देखना होता है कि कहीं हम अधिक समय तो नहीं लेते हैं, क्योंकि आगे के जो कार्यक्रम हैं, जैसे फिल्म संगीत आप 7:30 बजे सुनेंगे, उसका भी इंतजार रहता है। लेकिन सुप्रभात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बात यूं होती है जैसे आपके कानों तक, आपके दिलों तक हम सीधा पहुंचते हैं। चलिए एक गीत सुनते हैं, गीत को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसी से जुड़ी अगली बात हम करने वाले हैं।

जी श्रोतो, आपने संदेश से पहले गीत सुना। अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये तो हम क्या कहें कि क्यों नहीं लग रहा, लेकिन गीत सुनने के बाद एक विचार दिमाग में आता है, और वो है कि कहीं हमारे पढ़ने की आदत खत्म तो नहीं हो रही है। जी हाँ, अखबार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना या कोई और ऐसा साहित्य पढ़ना जो हम कागज में देखकर शब्दों को मन में पढ़ते हैं और आत्मसात करते हैं। अब पढ़ने की आदत कम क्यों हो रही है, इसका एक बड़ा कारण हमारे दैनिक जीवन के सभी काम इंटरनेट से जुड़ गए हैं, कंप्यूटर से जुड़ गए हैं, मोबाइल से जुड़ गए हैं। लिखा भी वहीं जा रहा है और पढ़ा भी वहीं जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि कंप्यूटर में पढ़ना, मोबाइल में पढ़ना ये अलग बात है। अगर आप किताब हाथ में लेकर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, तब उसका अलग असर होता है। इसलिए आज के युवाओं को खास तौर से हम कहेंगे कि पढ़ने की आदत, लिखने की आदत हमारी होनी बहुत जरूरी है। ये ना हो कि हम मोबाइल हाथ में लेकर के उसे देखें, उसे पढ़ें और फिर हमें नींद आती हो। ये आदत बहुत बुरी है। इसके बजाय आप अखबार पढ़िए, कोई पत्रिका पढ़िए, आपकी मनपसंद पत्रिका पढ़िए, तो पढ़ने की आदत छूट न जाए

ये हमें ध्यान रखना है। अब ये बात अलग है कि हम किसी के मन को भी पढ़ लेते हैं, किसी के चेहरे को भी पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब और अखबार पढ़ना न भूलेगा।

0: श्रोताओं, साफ सफाई किसको पसंद नहीं है, लेकिन पसंद सबको है, करते कम लोग हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अरे वाह, कितनी साफ सफाई है, ये घर कितना सुंदर है, ये ऑफिस कितना अच्छा लग रहा है। वो यूं ही अच्छा नहीं हो जाता है, वहां पर स्वच्छता की ओर, सफाई की ओर ध्यान दिया जाता है। यह आवश्यक है कि हम जहां भी बैठें, जहां भी काम करते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा गली मोहल्ला हो, या फिर हमारा कार्यस्थल हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जिसको हम कहते हैं, वैसा होना जरूरी है। आपको पता है, जब आपका मोबाइल साफ नहीं रहता है तो हम तुरंत उसको साफ करते हैं, चाहे उसकी स्क्रीन की बात करें, या फिर कभी अगर उसकी मेमोरी भर जाती है, यानी उसमें कहते हैं कि बिना काम की कुछ फाइलें क्रिएट हो गई है, उनको हटाना जरूरी है, हम तुरंत उनको हटाते हैं। हमसे नहीं हटती है तो हम मोबाइल मरम्मत करने वाले जो हैं, या जो मोबाइल सेंटर है वहां पर जाकर ये काम करते हैं, लेकिन करते तुरंत है। यही काम अगर हम घर परिवार और आसपास के माहौल, आसपास के वातावरण को करने में लग जाएं, तो हमारा घर ही नहीं, हमारा शहर भी साफ सुथरा हो सकता है।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से ना।

जी श्रोताओं, ये नोक झोंक तो हमारे घर में परिवार में होनी ही चाहिए, क्योंकि खुशियां तो इसी से मिलती है। इसलिए मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि सबसे बड़ा सुख जो है वो खुशी है। बाकी तो सब उतार चढ़ाव है, धूप और छांव है। इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, अब इजाजत दीजिए महेश उपाध्याय को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अवतार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सूरज और चंदा, ये था फिल्म का नाम। आवाजें थी मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की। ये गीत हमने लिया है फिल्म खूबसूरत से। आवाजें कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की है।

0: ये खूबसूरत गीत था फिल्म खूबसूरत का। आवाजें थी कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात कार्यक्रम और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले कर रहे हैं हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती

0: और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
7: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ सब मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र

0: यादव ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों की पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा जुपोन सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है,

0: कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेंजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुप्ता डेंटल क्लिनिक व इम्प्लांट सेंटर बीकानेर।
1: क्या आप भी खुलकर मुस्कुराने से कतराते हैं, टेढ़े मेढ़े या टूटे हुए दांतों की समस्या से परेशान है तो चिंता छोड़ दीजिए,
2: क्योंकि अब बीकानेर के पवनपुरी में आ गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पूर्णतया डिजिटल डेंटल क्लिनिक
1: गुप्ता डेंटल क्लिनिक व इम्प्लांट सेंटर,
2: जहां आधुनिक डिजिटल स्कैनर और डिजिटल एक्सरे द्वारा होता है आपके दांतों का सटीक इलाज।
1: अब पाए फिक्स दांत लगवाने की आधुनिक तकनीक, बेहतरीन डेंटल इम्प्लांट्स की सुविधा,
2: और हाँ, बिना किसी तार या ब्रेसेस के इनविजिबल अलाइनर्स द्वारा अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को दीजिए एकदम सीधा और खूबसूरत रूप।
1: दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबुज गुप्ता की देखरेख में स्माइल, डिजाइनिंग, रूट कैनाल और टीथ व्हाइटनिंग जैसी हर सुविधा उपलब्ध है।
2: तो आज ही आए, पता 160 नागनेची जी स्कीम, पवनपुरी, बीकानेर।
1: मिलने का समय है सुबह 10 से 2 और शाम 5 से 8 बजे तक। संपर्क करें 9414133997।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेल्दी बीकाना में। श्रोताओं, एक सुंदर मुस्कान न केवल हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है बल्कि अच्छी ओरल हेल्थ का भी प्रतीक है। दांतों की अनियमित बनावट को ठीक करने के लिए आज ब्रेसेस और अलाइनर्स जैसी आधुनिक उपचार उपलब्ध हैं। इन्हीं विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबुज गुप्ता। डॉक्टर अंबुज, आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद मैम।
3: डॉक्टर साहब, हम आज बात करने जा रहे हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स की।
4: जी।

0: तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि आप श्रोताओं को सरल भाषा में समझाइए कि ऑर्थोडोंटिक उपचार जिसमें कि ब्रेसेस और अलाइनर्स आते हैं वो होते क्या हैं।
1: डेंटिस्ट्री में बहुत तरह के उपचार होते हैं जिन्हीं में से एक शाखा है ऑर्थोडोंटिक्स। इसके अंतर्गत टेढ़े मेढ़े दांत हो, चाहे दांतों के बीच में गैप हो, चाहे दांत बाहर निकले हुए हो या दांत काफी अंदर हो, किसी भी प्रकार से दांत दिखने में सुंदर नहीं हो या खाने पीने में मरीज को असुविधा हो, उनको उपचार करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स के अंतर्गत। इसके अंदर दो प्रकार की विधि होती है, जो कि पारंपरिक विधि है जिसको हम ब्रेसेस कहते हैं, दांतों पर तार लगाकर

0: टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक अलाइनमेंट उनका बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों और युवाओं में विशेषकर हम देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या बड़ी ही आम हो गई है, तो ये आपके पास किस उम्र के मरीज हैं इस समस्या को लेकर आते हैं?
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल ये समस्या बहुत आम हो गई है। हम इसको यूं समझें कि पहले भी समस्या आम थी, पर पहले इतनी जागरूकता नहीं थी। आजकल हमारे देश में जागरूकता बहुत अच्छे लेवल पे हो गई है, और इसकी वजह से लोग बहुत अर्ली एजेस में हमारे पास आ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों में 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र से लेके पेरेंट्स एकदम ध्यान रखते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाते हैं। तो 6 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक ये इलाज संभव है, पर इसका मैक्सिमम फायदा 6-7 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल की उम्र तक हो जाता है, क्योंकि उस दौरान कोई भी ग्रोथ यदि मुंह में हो रही है तो उसका फायदा भी हमें मिल जाता है, साथ ही पेशेंट को आगे भविष्य के लिए मुस्कान हमेशा के लिए सुंदर मिल जाती है।
0: यानी कि छोटी उम्र में ही अगर हम सावधान हो जाएं और पेरेंट्स अगर कॉशियस रहें और उन्हें डेंटिस्ट के पास अगर इस तरीके की कोई समस्या लगती है तो जल्दी उपचार होने की संभावना बनी रहती है। एक जहन में सवाल आता है कि माता पिता को कैसे पता चले कि उनके बच्चे को अब ब्रेसेस की आवश्यकता है?
1: देखिए, अमूमन एक एज होती है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड डेंटिशन एज, जब हमारे दूध के दांत गिरते हैं बच्चों के अंदर और पक्के दांत आते हैं। ये उम्र होती है 7 साल से लेकर 11 साल की उम्र। इस दौरान सभी दूध के दांत टूटते हैं और धीरे धीरे नए परमानेंट टीथ मुंह के अंदर इरप्ट होते हैं आते हैं। इस दौरान जब भी पेरेंट्स को लगे कि दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा क्राउडिंग, एकदम जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं एकदम आड़े टेढ़े आ रहे हैं, तो किसी भी रूप में पेरेंट्स को लगे तो इस एज के दौरान 7 साल ऑनवर्ड्स 12 साल की एज के बीच में बेस्ट समय है डेंटिस्ट को विजिट करने का और ट्रीटमेंट के बारे में अपनी राय लेने का।
0: जब दूध के दांत टूटने लगे और नए दांत आने लगे उस बीच में जो पैटर्न बन रहा है दांतों का, उसे ऑब्जर्व करते रहें।
1: उसी को हम यदि उसी समय कर लेंगे तो बहुत आराम से हम
0: पता लगा सकेंगे।
1: अभी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या कुछ टाइम बाद हमारे को जरूरत पड़ेगी? यूजुअली 12 साल की एज के बाद लोग बाग ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो भी एक अच्छी कंसेप्ट है कि 12 साल की एज के बाद सारे परमानेंट टूथ आ जाते हैं, तो आप आराम से ट्रीटमेंट करवाएं। बट हाँ, कुछ केसेस में हम 7 साल से 12 साल की एज के बीच में भी ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, दांतों का इरप्शन के दौरान ही इलाज कर देना। 7 साल की एज के बाद एक बेस्ट टाइम है कि हम डेंटिस्ट को विजिट करें।
0: एक डॉक्टर साहब, जॉ लाइन जो होती है, क्या जॉ लाइन छोटी होना या बड़ा होना ये भी प्रभावित करता है दांतों को टेढ़ा मेढ़ा होने में?
1: जी, मुंह के अंदर दो ही चीजें हैं, या तो एक हड्डी है या दांत है। यदि हड्डी पर्याप्त बड़ी नहीं होगी तो दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे, यदि हड्डी बहुत ज्यादा होगी तो दांतों के बीच में गैप आएगा। तो इसलिए जॉ और दांत दोनों का प्रॉपर ग्रोथ सिंक्रोनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है, और जॉ लाइन यदि आगे पीछे होगी तो ऑब्वियसली फंक्शनली मतलब खाने चबाने में भी पेशेंट को असुविधा होगी, और ऑब्वियसली कॉस्मेटिकली दिखने के अंदर तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए जॉ लाइन का दांतों के साथ सिंक्रोनाइज होना, समन्वय होना बहुत आवश्यक है,
0: जिससे कि ओरल हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और सुंदरता जैसे कि हम सबकी
1: चाहते हैं वैसे चाहते रहे। हैं। बिल्कुल
0: बिल्कुल, बहुत ही आपने बखूबी बताया कि हमें किस समय जो है वो ऑर्थोडोंटिक उपचार बच्चों के लिए करवाना चाहिए, उसका सही समय क्या होता है, और यदि समय पर उपचार ना करवाया जाए तो भविष्य में क्या समस्याएं हो सकती हैं?
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया। यदि हम समय पर उपचार नहीं कराएं और हम उसको लेट कर दें, कई बार पेशेंट हमारे पास 25-30 साल की एज में आते हैं जिसको हम एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं, उस समय तक आते आते जिन पेशेंट्स के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, आपस में क्राउडिंग होती है, वहां पर पायरिया बनना शुरू हो चुका होता है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं और दांत धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। कई बार बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके दांत बाहर की तरफ होते हैं, वो उस समय हमारे पास आते हैं तब तक उनका पूरा मसल्स का विकास हो चुका होता है
0: जी।
1: और उस समय इलाज करने का बहुत ज्यादा फायदा हमें नहीं मिल पाता। इलाज तो होता है, फायदा भी होता है, पर यही पेशेंट यदि 12 साल की एज में आधा सा जल्दी, तो ऑब्वियसली डेवलपिंग एज के अंदर विकास भी प्रॉपर होता और उनके रिजल्ट भी काफी अच्छे आते।
0: यानी कि इस ट्रीटमेंट के अंदर राइट टाइम राइट एज जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली। हम ये माने कि 12 साल की एज के बाद तो एक बार डेंटिस्ट को इस विषय के लिए आपको विजिट करना ही चाहिए, जिससे कि कोई भी परेशानी हो तो वो उसको उस टाइम आपको बता सके।
0: डॉक्टर अंबुज गुप्ता, अभी तो हमने बात करी समस्याओं की और परेशानी की जो हमें दांतों में आ सकती है, और उसका उपाय कैसे ब्रेसेस और जो सही अलाइनमेंट कर सकता है, लेकिन समस्याओं को यदि सुलझाना हो तो संगीत से बेहतर कुछ नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: तो अभी आगे कार्यक्रम में बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का एक गीत बताएं जिससे वो भी उसका आनंद ले सके।
1: बिल्कुल बरखा जी, एक मेरा बहुत ही मनपसंद गीत है, पल पल दिल के पास, मैं चाहूंगा उसके लिए आपसे निवेदन रहेगा।
0: आइए सुनवाते हैं आपको और श्रोताओं को आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना डॉक्टर अंबुज गुप्ता की पसंद का ये गीत। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये गीत पसंद आया होगा। अभी हम बात कर रहे थे ऑर्थोडोंटिक उपचार के बारे में, जिसमें कि ब्रेसेस और अलाइनर्स की आवश्यकता कब पड़ती है। हेल्दी बिकाना कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नवीनतम ऑर्थोडोंटिक उपचारों के बारे में, जिसमें कि विशेषकर हम जान रहे हैं ब्रेसेस एवं अलाइनर्स के बारे में डॉक्टर अंबुज गुप्ता से। अभी हमने जाना इससे संबंधित समस्याओं के बारे में। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इसके उपचार और इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जो ब्रेसेस है, जब डॉक्टर के पास हम आते हैं तो अगर एक थोड़ी संक्षिप्त जानकारी हमें उससे पहले मिल जाए कि ब्रेसेस लगवाने की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है।
1: बिल्कुल, कोई भी पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आता है तो हमें उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है, बीमारी को पकड़ना पड़ता है। उसके लिए पेशेंट्स के कुछ एक्सरेज, ओपीजी जिसमें सबसे सामान्य है, सिफेलोमेट्रिक एक्सरे और सिफेलोग्राम, साथ में कुछ फोटोज और पेशेंट का एक डिजिटल स्कैन या इम्प्रेशन, जिसके माध्यम से हमें पेशेंट का पूरे जबड़े की स्थिति पता लगती है। ऊपर और नीचे के दांतों का आपस में कैसा ऑक्लूजन है, कैसे उनका समन्वय है, वो पता लगता है। तो सबसे पहले है डायग्नोसिस, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान कि हमारे को उसको किस तरह के ब्रेसेस देने हैं, क्योंकि ब्रेसेस बहुत प्रकार के आते हैं, जिसमें मेटल ब्रेसेस एक होते हैं जो आपने सामान्य रूप में देखा होगा, धातु के रंग के होते हैं, स्टील मेटल के ब्रेसेस के होते हैं। दूसरे सिरेमिक ब्रेसेस जो कि कॉस्मेटिकली एकदम दांत के रंग के जैसे होते हैं, कुछ केसेस में लिंगुअल ब्रेसेस भी देते हैं, अर्थात वो दांत के अंदर की तरफ लगते हैं, और कुछ केसेस में अलाइनर्स। तो किस तरह के ब्रेसेस लगने हैं वो हमें डिसाइड करना होता है। उसके बाद एक विशेष रसायन से हम उन ब्रेसेस को पेशेंट के दांतों पर लगाते हैं और फिर उनको तारों के माध्यम से कस देते हैं। ये प्रक्रिया ब्रेसेस वाली थोड़ी सी लंबी है, जिसमें पेशेंट की कंडीशन देखकर, दांतों की कंडीशन देखकर 6 महीने से लेकर 3 साल तक का समय लग जाता है। यदि किसी के दांत कम खराब है तो 6 महीने में हो सकता है, किसी के ज्यादा खराब है तो 2 से 3 साल का समय भी लग सकता है। और ब्रेसेस के अंतर्गत हर माह पेशेंट को हर 3 से 6 हफ्ते में डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है, जिसके दौरान डॉक्टर उन तारों को या तो कस देता है या फिर उनको चेंज कर देता है या उनको दिशा देता है। ये इलाज जब भी पूर्ण होता है, चाहे वो अवधि 1 साल की हो, 2 साल की या 3 साल की, उसके बाद कुछ समय के लिए रिटेनर्स भी पहनने पड़ते हैं।
0: रिटेनर्स क्या होते हैं?
1: रिटेनर्स का मतलब है कि हमने जो इलाज किया है, जैसे कि आप इसके नाम से देख सकते हैं, उसका नाम है रिटेनर्स। तो रिटेनर्स का नाम से ही हम देख पाएंगे, ये उस इलाज को उसी स्थिति में रिटेन करता है जहाँ पे वो फाइनली दांत पहुँच गए हैं।

0: उसके बाद कोई भी दांतों का मूवमेंट नहीं होता, तो रिटेनर्स अंदर की तरफ ही लगते हैं, सामने से बिल्कुल दिखाई नहीं देते और उसको पहनने से पेशेंट को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती, बल्कि पेशेंट के हित में ही होता है कि वो उसको पहने और दांतों का कोई भी आगे मूवमेंट नहीं हो पाए।
1: बिल्कुल, एक सामान्य सी अवधि भी आपने हमें बताई कि 1 से 3 साल का समय जो है वो सामान्य रूप से लग सकता है। ये क्या उम्र के ऊपर निर्भर करता है या फिर ये इसकी एक सामान्य अवधि है?
0: नहीं नहीं, सामान्य ये दांतों की कंडीशन में निर्भर करता है। बहुत माइल्ड केसेस है जिनमें कम दांत टेढ़े मेढ़े हैं, वो लगभग साल भर में इलाज पूरा हो जाता है। जिनके दांत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, किसी के अंदर सर्जरी की भी जरूरी होती है जिसको हम ऑर्थोडोंटिक सर्जरी बोलते हैं, उसके अंदर 1.5 से 2 साल 3 साल का समय भी लग जाता है। हाँ, उम्र का भी एक प्रभाव पड़ता है, जितना कम एज में ट्रीटमेंट होगा उतना जल्दी दांतों का मूवमेंट होने की संभावना रहती है। जैसे जैसे हम एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, मतलब उम्र में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है इलाज के दौरान।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कम उम्र में ही इलाज कराना ठीक रहता है, तो यदि हम बात करें कम उम्र के बच्चों की या युवाओं की, तो क्या वो अपनी सामान्य गतिविधि या खेलकूद जैसी एक्टिविटीज या जो भी अपना रूटीन है, बच्चों की इच्छा रहती है चॉकलेट्स वगैरह है, तो क्या वो सब चीजें सामान्य रूप से कर सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बरखा जी, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध बच्चे के ऊपर नहीं है। वो अपनी रूटीन की स्कूल एक्टिविटीज, खेलने कूदने की एक्टिविटीज सब एकदम नॉर्मल रूप में कर सकते है। हम सिर्फ दो ही बातों का ध्यान देने के लिए हमेशा बच्चे को या पेशेंट को कहते हैं। सबसे पहली बात कि ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब दांतों में ब्रेसेस लगे हैं, अलाइनर्स की बात नहीं कर रहे हम, अलाइनर्स एक दूसरी प्रक्रिया है, जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो दांतों में तार बंध जाते हैं, तो जब तार बंधे हो तो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्थोडोंटिक ब्रशेज या इंटरडेंटल ब्रशेज भी आते हैं, जिससे कि दांतों के मध्य आराम से सफाई की जा सकती है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा सख्त चीज या चिपचिपे पदार्थ जैसे गम, चिपकने वाली चॉकलेट्स, उस तरह की चीजें खाने के लिए थोड़ा सा मना करते हैं। उसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
1: यानी कि अपनी डेली एक्टिविटी और रूटीन जो है वो वैसे ही फॉलो किया जा सकता है,
0: उसमें कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है।
1: क्या बच्चे को खेलते कूदते वक्त अगर उस पे लग जाए तो क्या वो उसे प्रभावित करेगी?
0: हाँ, खेलते कूदते वक्त लग जाए, कहीं तार चुभ जाए या कोई ब्रेसेस टूट जाए, तो फिर वापस अपने डेंटिस्ट से विजिट करके उसको सही करवाना पड़ेगा। बस वो थोड़ा ध्यान रखें, अदरवाइज कोई विशेष बात नहीं है।
1: थोड़ी सी सावधानी और आप एक अच्छी मुस्कान पा सकते हैं,
0: ले पा सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर अंबुज गुप्ता, हम बात कर रहे हैं ब्रेसेस के साथ में, शुरुआत में आपने एक शब्द काम में लिया अलाइनर्स, तो ये अलाइनर्स और ब्रेसेस में क्या डिफरेंस होता है?
0: बिल्कुल बरखा जी, ब्रेसेस जो होते हैं वो दांतों पर सामने की तरफ लगाए जाने वाले धातु के बने हुए ब्रैकेट्स होते हैं और जिनके ऊपर एक वायर लगा दिया जाता है। ये सबको दिखता है और पता भी लगता है कि हाँ भाई इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जबकि अलाइनर्स जो होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट सेट होते हैं जो कि सिलिकॉनाइज्ड ट्रेज होती हैं। वो पेशेंट पहन लेता है तो उसके बाद पता ही नहीं पड़ता है कि उसको पहना हुआ है, एक तरह से वो उनको हम इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं। तो अलाइनर्स पहनने के बाद आप सोशली कहीं पे भी जाएं, कोई पता नहीं पड़ेगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि आपके मुंह में कोई इलाज चल रहा है। अलाइनर्स के लिए आपको डेंटिस्ट के पास हर महीने आना नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने कहा था ब्रेसेस में हर महीने आना पड़ता है। अलाइनर्स के अंदर पूरा सेट डिजिटली डिजाइन होता है, आजकल डिजिटल का जमाना है, सब चीजें डिजिटल हो रही हैं, डिजिटल यूपीआई, डिजिटल इंडिया, डिजिटल घड़ी, सब चीजें डिजिटल हो रही हैं। उसी तरह से डेंटिस्ट्री भी काफी डिजिटल हो चुकी है और एडवांस्ड हो चुकी है।
1: क्या बात है?
0: तो अलाइनर्स को हम पूरा डिजिटली एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका स्कैन कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसके पूरे सेट डे वन पे ही पेशेंट को हैंड ओवर कर देते हैं, जो कि उनको हर 10 से 15 दिन में शेड्यूल के अकॉर्डिंग घर पे ही चेंज करना होता है। उसके लिए बार बार डेंटिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं होती है। चूंकि ये अलाइनर्स रिमूवेबल होते हैं, मतलब पेशेंट उसको निकाल सकता है, इसलिए उसके अंदर खान पान का कोई रोक टोक नहीं है। उसको दिन में मिनिमम 22 घंटे पहनना होता है और बाकी खाना खाते टाइम आप उसको निकाल सकते हैं। थर्डली, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप ब्रश करेंगे तो उसको आप उतार के ब्रश करेंगे तो ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। तो अलाइनर्स किसी भी सूरत में आज के टाइम में बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और ब्रेसेस से अच्छी है। हालांकि एंड रिजल्ट जो होता है उसके अंदर ब्रेसेस और अलाइनर्स में अंतर नहीं है, दोनों के अंदर ही सेम रिजल्ट आते हैं। पर चूंकि आज देखिए, आज ब्रेसेस मैं लगा रहा हूँ या कोई भी डेंटिस्ट लगा रहा है, तो वो मैनुअली अपने विवेक से लगाएगा और एक अलाइनर सॉफ्टवेयर से डिजाइन होके बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अंतर तो उसमें रहता ही है। तो अलाइनर्स का ये डिफरेंस है।
1: हम ये कह सकते हैं कि जो अलाइनर्स है वो ब्रेसेस का अपग्रेडेशन है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसे हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो डेंटिस्ट ने
0: ये बहुत नवीनतम आप कहें डेवलपमेंट है। इसका एक फायदा और है बरखा जी, कि किसी भी पेशेंट को, जैसे एक हमारे पास पेशेंट कई बार 25-30 साल की एज में आते हैं, वर्किंग मदर्स होती हैं, कोई पेशेंट वर्किंग में है, अब उनको ब्रेसेस लगा के जाना वहाँ पे बहुत ऑकवर्ड लगता है कि हम अपने वर्क प्लेस पे, अपने कार्यस्थल पर इस तरह के ब्रेसेस और तार लगा कर जाएंगे तो लोग बा क्या कहेंगे, तो वो लोग इस चीज को बहुत प्रेफर करते हैं।

0: कि हमारे को अलाइनस लगा लें, जिससे कि हमारे को कार्य क्षेत्र में भी कोई असुविधा नहीं होगी, या कोई पेशेंट बाहर रहता है और उसके पास हमेशा हर महीने आने की सुविधा नहीं है कि वो डेंटिस्ट को विजिट कर सके, तो वो भी अलाइनस को प्रेफरेंस देते हैं, जिससे कि वो अपने काम जहाँ पे भी वो करते हैं वहाँ पे रहते हुए आराम से अलाइनस पहन सकते हैं।
1: अलाइनस पहनते हुए आपकी खूबसूरती जो है उस ट्रीटमेंट के दौरान भी बनी रहेगी, बनी जो रहेगी। आपकी नेचुरल ब्यूटी है वो तो उस समय रहेगी, और अलाइनस का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद में आप और उसको और
0: अच्छे सुंदर मुस्कान पाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छा हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे एडवांसमेंट्स जो है वो ऑर्थोडोंटिक्स में आ रहे हैं, और ये सभी श्रोताओं के लिए जानना आवश्यक है कि जो एक मिथ्स है ब्रेसेस के बारे में या फिर जो अभी नई टेक्नोलॉजी के बारे में वो ठीक नहीं है, और आप एक अच्छे डेंटिस्ट से परामर्श लेकर आप इन्हें अपना सकते हैं और एक खूबसूरत मुस्कान पा सकते हैं। हेल्दी बीकाना कार्यक्रम को डॉक्टर अंबुज गुप्ता हम कुछ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आपसे फिर अनुरोध रहेगा कि आप अपनी पसंद का एक और गीत बताएं, तो क्यों ना हम इस कार्यक्रम को और संगीतमय कर दें और जाने कि आप कैसा म्यूजिक पसंद करते हैं अपनी इस भागती दौड़ती भरी जिंदगी के बीच में।
0: बरखा जी धन्यवाद, मेरा एक और पसंदीदा गीत है चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर अंबुज गुप्ता की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं हेल्दी बीकाना कार्यक्रम, जो कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों और जागरूकता के लिए है। और इसमें आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबुज गुप्ता, ऑर्थोडोंटिस्ट, जो हमें ब्रेसेस और अलाइनर्स के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, उनसे जानते हैं कुछ और उपयोगी जानकारी इसी विषय पर। डॉक्टर साहब, हमने अभी जो अधिकतर बात करी वो बच्चों पे और युवाओं पर केंद्रित थी। बीच में आपने हमें बताया कि बड़ी उम्र के लोगों में भी ऑर्थोडोंटिक उपचार जो है वो संभव है। ये बात उचित है आपकी कि अगर सही समय पर राइट एज के अंदर आ जाएं तो आप लोगों के लिए भी आसानी रहती है और पेशेंट के लिए भी आसानी रहती है। लेकिन यदि बड़ी उम्र के लोग ऑर्थोडोंटिक उपचार करवाना चाहें, जिसका चलन आजकल बढ़ भी रहा है क्योंकि अब कोई राइट एज नहीं है, हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बरखा जी, इलाज के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती है, चाहे वो कैसा भी इलाज हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि

0: ये इलाज 6 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के व्यक्ति का हम कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि बड़ी उम्र में इस इलाज को करवाना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये प्रेफरेंस उनकी रहेगी कि वो ब्रेसेस करवाना चाहते हैं या अलाइनर्स, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा सा अलाइनर्स का चलन ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि पोती भी इलाज करवा रही है, उनकी मदर का भी इलाज चल रहा है और दादी भी इलाज करवाना चाहती है। तो ये इलाज आजकल संभव है, नई टेक्निक से अलाइनर्स के द्वारा हम इस चीज को आराम से मुकम्मल कर सकते हैं।
1: यानी कि डॉक्टर साहब, ये तो क्लियर है कि ब्रेसेस या अलाइनर्स लगाने की कोई निश्चित आयु नहीं है। अगर राइट एज पर लगाया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बड़ी उम्र में भी इन्हें लगवा सकते हैं। और अलाइनर्स तो जो है वो दिखाई भी नहीं देते, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि दिखाई नहीं देते, तो उससे बिल्कुल भी हमें कहीं भी किसी उम्र में लगा के भी घूम रहे हैं तो वो एक ऑकवर्डनेस नहीं रहती।
0: देखो, कुछ भी असहज महसूस नहीं होता, वो अलाइनर्स लगाकर कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में आसानी से अपना काम कर सकते हैं और लोगों को पता भी नहीं पड़ता है।
1: अगर हम बड़ी उम्र में ब्रेसेस या अलाइनर्स लगवाते हैं तो क्या हमारे जो कोई पुराने दांत जो परमानेंट टूथ है उसे कुछ शिफ्टिंग की, निकलवाने की, या दांत कुछ ढीले पड़ जाएं, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं?
0: देखिए बरखा जी, दांत निकलवाने का रिलेशन उम्र से नहीं है। दांत निकलवाना या नहीं निकलवाना वो दांतों की स्थिति पर निर्भर करता है, चाहे मरीज किसी भी उम्र का हो। यदि मरीज कम उम्र का है या ज्यादा उम्र का है और उसके दांतों में क्राउडिंग है, दांत एकदम आड़े टेढ़े हैं और हमें दांत निकलवाना है तो निकालने ही पड़ते हैं। तो दांत में यदि बहुत ज्यादा स्पेस है, आराम से दांतों का ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हमें दांत निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए दांत को निकलवाना या नहीं निकलवाना का उम्र से कोई संबंध नहीं है। और हाँ, निकलवाने से कभी भी कोई बाकी दांतों पर प्रभाव नहीं पड़ता, ना कोई आंखों पर प्रभाव पड़ता है और ना ही बाकी दांत ढीले होते हैं। ये एक बहुत भ्रम है लोगों में। हर कोई सोचता है कि दांत निकलवाएंगे तो क्या पता हमारी आंखें कमजोर हो जाएं या हमारे बाकी दांत ढीले हो जाएं। ऐसा कोई भी प्रभाव किसी भी दांत पे नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कोई भी डेंटिस्ट कार्य करता है वो सभी सावधानियां बरतते हुए अपना काम करता है। तो इसलिए इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंतता से वो इलाज अपना करवा सकते हैं और डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं।
1: ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, और इस तरीके की कोई भी समस्या हमें इस इलाज करवाने के बाद में सामना उसका करने की आवश्यकता नहीं है। अब उपचार के दौरान डॉक्टर साहब, या फिर उसके बाद में हमें ब्रशिंग या ओरल हाइजीन के लिए कुछ विशेष ध्यान या खान पान में कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है?
0: जी, जैसे मैंने बताया कि इसमें दो टाइम ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्थोडोंटिक ब्रशेज या इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं, जो कि तारों के मध्य सफाई करने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथ ही जो माउथ वॉशेज आते हैं, जो कि एंटी डिस्कलरेशन वाले माउथ वॉशेज होते हैं, क्योंकि ये हमें लंबे टाइम तक माउथ वॉश करना होता है, उससे किसी भी प्रकार की स्टेनिंग या निशान दांतों पर नहीं आने चाहिए। इसलिए एंटी डिस्कलरेशन वाले माउथ वॉश आते हैं आजकल, जो कि बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। उन माउथ वॉश से भी दिन में एक या दो बार कुल्ला करना आवश्यक है, जिससे हमारी ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो ये विशेष सावधानी हमारे को इस इलाज के दौरान रखनी पड़ती है, उसके अतिरिक्त कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा चिपकने वाली चीजें नहीं खाएं, बहुत ज्यादा सख्त चीजें नहीं खाएं, बाकी सब खाना पीना अलाउड है।
1: बिल्कुल डॉक्टर अंबुज गुप्ता साहब, आपने बहुत ही उपयोगी और बखूबी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। अंत में हेल्दी बिकाना कार्यक्रम में जाते जाते हम आपसे यही चाहेंगे कि स्वस्थ और सुंदर मुस्कान बनाए रखने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: स्वस्थ और सुंदर मुस्कान बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हम दोनों टाइम ब्रश करें, दो बार ऑब्वियसली प्रॉपरली हम कुल्ला करें, माउथ रिंस करें। तीसरा, हम फ्लॉस करें दांतों के मध्य, यदि कहीं पे भी कोई खाना फंस रहा है तो उसको फ्लॉस के माध्यम से निकालें। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, हर 6 माह या 1 साल में अपने डेंटिस्ट को विजिट करके उनसे परामर्श जरूर लें और दांतों का प्रॉपर इलाज करवाएं।
1: डॉक्टर अंबुज गुप्ता, आपने ब्रेसेस, अलाइनर्स और दांतों की सही देखभाल से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आज की हेल्दी बीकाना कार्यक्रम में इस चर्चा से श्रोताओं को दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने और समय पर उचित उपचार लेने की प्रेरणा मिली होगी। नमस्कार,
0: बहुत धन्यवाद।
2: क्या आप भी खुलकर मुस्कुराने से कतराते हैं? टेढ़े मेढ़े या टूटे हुए दांतों की समस्या से परेशान है तो चिंता छोड़ दीजिए,
3: क्योंकि अब बीकानेर के पवनपुरी में आ गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पूर्णतया डिजिटल डेंटल क्लिनिक
2: गुप्ता डेंटल क्लिनिक व इम्प्लांट सेंटर,
3: जहां आधुनिक डिजिटल स्कैनर और डिजिटल एक्सरे द्वारा होता है आपके दांतों का सटीक इलाज।
2: अब पाएं फिक्स दांत लगवाने की आधुनिक तकनीक, बेहतरीन डेंटल इम्प्लांट्स की सुविधा,
3: और हाँ, बिना किसी तार या ब्रेसेस के इनविजिबल अलाइनर्स द्वारा अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को दीजिए एकदम सीधा और खूबसूरत रूप।
2: दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबुज गुप्ता की देख रेख में स्माइल डिजाइनिंग, रूट कैनाल और टीथ व्हाइटनिंग जैसी हर सुविधा उपलब्ध है।
3: तो आज ही आए, पता 160 नागनेची जी स्कीम, पवनपुरी, बीकानेर।
2: मिलने का समय है सुबह 10 से 2 और शाम 5 से 8 बजे तक। संपर्क करें 9414

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हेल्दी बी कर्णा। आज आपने दांतों के इलाज में आधुनिक तकनीक का उपयोग विषय पर डॉक्टर अंपुज गुप्ता से श्रीमती बरखा थानवी व्यास की बातचीत सुनी। प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजन था श्री अमित सिंह का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश का इंतजार करने की सलाह दी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर हर बार की तरह लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भाजपा की ओर से पार्टी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण रखा गया है। प्रधानमंत्री आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति हरमीनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने सेशेल्स को हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और मजबूत होंगे। बालोतरा में पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंतजामों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रिफाइनरी पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल तथा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए जिला प्रशासन के साथ HPCL भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है।
1: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, आगंतुकों के प्रवेश पास, प्रोटोकॉल तथा अन्य व्यवस्थाओं को

0: अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुचारू संचालन किया जा सके। गौरतलब रहे कि रिफाइनरी का लोकार्पण पहले 21 अप्रैल को होना था, लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले एक यूनिट में आग लगने की वजह से वो कार्यक्रम टल गया था। करीब 90,000 करोड़ की लागत से निर्मित ये BS6 मानक की अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों के चयन पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सफल सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर CCTV निगरानी, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर जांच के साथ ही आवश्यक पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पल्स पोलियो रविवार है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 3 दिन के इस राष्ट्रीय अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित 59,000 से अधिक पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा देंगे। टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो के खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप आवश्यक रूप से पिलाएं।
1: गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का कभी बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब वहां 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। इस बीच केंद्रीय मंत्री आज इस संबंध में अलवर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में बाघों के पुनर्स्थापन में योगदान और उल्लेखनीय सेवा देने वाले वनकर्मी, एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून पूर्व की बारिश और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। राज्य भर में कई स्थानों पर हल्की बारिश के बीच किसानों ने खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई के लिए कुछ अच्छी बारिशों का इंतजार करने की सलाह दी है, जिससे जमीन में नमी बनी रहे। कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के प्रभारी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि किसानों को जल्दबाजी में बुवाई से बचना चाहिए।
3: तब हमें जब बिजाई करनी है तो उसमें ध्यान रखना है कम से कम हमारी 1 या 2 अच्छी बरसात हो जाए, तो उसमें क्या है कि हमारे जो जमीन की हीट निकल जाएगी, वरना अगर जमीन गर्म रहेगी तो हम कोई भी बिजाई कर देते हैं तो उससे हमारे जो बीज है उसके बीज की पैदावार कम होने का, बीज खराब होने के ना चांस बने रहेंगे। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब तक बरसात अच्छी नहीं हो, अगर देसी भाषा में कहें तो 5-6 उंगल बरसात नहीं हो, तब तक ना किसानों को अब क्या बिजाई की तरफ नहीं जाना चाहिए।
1: इस बीच मॉनसून की गतिविधियां आगे बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई भागों में आज तेज बारिश तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में भी अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना जताई है।

0: पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली कड़कने और तेज हवा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। गौरतलब है कि देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले इन 6 जवानों में झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के सुरेंद्र मोगा भी शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में आए बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश के इंतजार करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन
1: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके

0: हमारे पास ला करके दिया तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक को एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक अलार्म सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: यस।
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारीगण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचड़े को, अन्य सभी कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि क्या इस कचड़े के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारीगण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसमें उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
1: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहा है, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है, खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: असर
0: कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर से अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल है, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब
0: इसका
1: में?
0: जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा

0: व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लूँ कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूँ, ये बिड का आधार था, न कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो देना होगा और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा। लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा। तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है।
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बोतल में पानी पिए और वो बोतल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है। तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं डालते जाएं वो एक भर कितना कंप्रेस हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी कुछ।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहाँ से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी।

0: अंबिकापुर के ट्वीट को रीट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। बच्चों के लिए पेश है कार्यक्रम मुकुल। आज का ये कार्यक्रम लेकर आई हैं अनीता जोशी।

जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुलार। मैं हूं आपकी अपनी अनीता दीदी और लेकर आई हूं आज आपका अपना हम सबका चहिता प्रोग्राम मुकुल, जिसका रहता है आपको बेसब्री से हर रविवार इंतजार। तो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां हो गई है खत्म, नानी का घर, आम की पेटियां, ढेर सारे फल, देर तक सोना, सब हो गया ना। अब वक्त आ गया है अपनी नई क्लास में कदम रखने का, नई किताबें खोलने का और नए दोस्तों से मिलने का। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं कुछ बेहद खूबसूरत और जोश से भरी हमारी इस पंक्तियों के साथ। लौट आई है रौनक फिर से स्कूल के गलियारों में, लौट आई है रौनक फिर से स्कूल के गलियारों में, चहक रहे हैं बच्चे देखो जैसे फूल बहारों में, नई किताबें, नए सपने, नई उमंगे मन में हैं, चलो चलिए अब स्कूल की ओर, एक नया जोश हमारी धड़कन में है। तो जी हाँ बच्चों, स्कूल खुल रहे हैं और आपकी ये दोस्त अनीता आपको नए स्कूल सत्र की बहुत बहुत देती है बधाई। तो बच्चों, छुट्टियां खत्म हो गई है, स्कूल की यादें वापस शुरू हो गई है। वैसे सच सच बताना बच्चों, सुबह सुबह जब माँ और जब पापा कहते हैं उठो बेटा चलो स्कूल का टाइम हो गया है, तो आप क्या कहते हैं? थोड़ा सा और सोने दो, थोड़ी सी नींद और लेने दो। तो बच्चों, जब आप स्कूल पहुंचोगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, उनसे पूछोगे अरे छुट्टियों में कहाँ गए थे, नानी के घर, क्या खाया, तो वो जो खुशी होती है ना, और जो वो हमारे हम घूमने गए थे, हमने क्या देखा, वो सब हमारे दिमाग में वापस आ जाता है कि अरे हमें ये बात करनी है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुकुल के दोस्तों, नया साल सिर्फ नई क्लास में जाने का नाम नहीं है, ये अपनी आदतों को थोड़ा सा और बेहतर बनाने का भी मौका है। इस बार हमें एक छोटा सा वादा खुद से करना है। क्या वादा है ये? कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, अपना होमवर्क करेंगे और खेल कर समय समय पर अपना सारा काम करेंगे। तो बच्चों, आओ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

तो बच्चों, आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है मुकुल, वो हमारे और आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में है बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी ज्ञान की बातें और आपके पसंदीदा बाल गीत, तो जो हम ये अभी आपने सुना। तो बच्चों, कहानियों अभी तो आपने सुना गीत, अब कुछ कविताएं ऐसी होती है जो हमें बहुत सीख दे जाती है, तो आज की हम आपको ये कविता सुनाते हैं। तो आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रख लीजिए और मुस्कुराते हुए सुनिए ये एक कविता जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमें बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखता है, वो है हमारे सूरज जी पर। तपता सूरज, तपता सूरज आग उगलता, धरती जैसे तवा बन जाती, लू के थपेड़े चुभते ऐसे मानो चिंगारी बरसाती, पेड़ों की छाओं में भी थक जाती है नदियां जैसे सूख सी जाए, पेड़ों की छाओं भी थक जाती है नदियां जैसे सूख सी जाए, पंछी भी चुप बैठे रहते गीत अपने भूल जाए, राहों पर सन्नाटा पसरा धूप नाचे अंगारों जैसी, हर चेहरा पसीने से भीगा हालत हो जाती है वैसी, इस पर तपन में भी छिपी है जीवन की एक सच्ची सीख सहनशीलता,

धैर्य का संग बनता मन को और बलिष्ठ। तप कर ही सोना निखरता, यही प्रकृति का है संदेश। गर्मी का ये तपता सूरज देता जीवन को नव परिवेश। तो बच्चों, हमारी कविता भी आज हमें यही सीख देती है कि जैसे हम सूरज भगवान की तरह तपेंगे, वैसे ही हमारे जीवन में नया निखार आएगा। तो आइए सुनते हैं ये बाल गीत।

तो बच्चों आपने सुना ये बाल गीत जो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बच्चों अभी गर्मी की छुट्टियों में आप कई जगह पर अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने गए होंगे, वहां पे आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी होंगी जो आपने कभी सुनी थी पर देखी आंखों से अब है। तो आपके जब आप वहां घूमने गए तो वो आपके दिमाग में आपके मन में कुछ कहानियां भी बनी होगी, जिसे और कुछ ऐसी कहानियां जो न कही न सुनी अनकही कहानियां। तो आज इसी पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है हमारे अनकही कहानियां। तो बच्चों एक छोटे से शहर में रहने वाला एक राहुल इतिहास का बहुत ही शौकीन था। उसे पुरानी चीजों में छिपी कहानियां सुनना समझना बहुत पसंद था और पुराने सिक्के पुरानी चीजें उसको इकट्ठा करने का भी उसे बहुत ही शौक था। उसके दादाजी भी उसे अक्सर पुराने समय की बातें सुनाते थे जिससे राहुल बहुत रुचि से सुनता था।

और उनको सोचता था भी। इससे उसकी जो इच्छा थी, वो जिज्ञासा थी, वो और बढ़ सी गई थी। एक दिन राहुल स्कूल गया और स्कूल में ये घोषणा हुई कि हम स्कूल से छुट्टियों में इंटरनेशनल डे के लिए म्यूज़ियम जाएंगे, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे पे जाएंगे और वहाँ हम ये मनाया जाएगा और सभी बच्चों को शहर के संग्रहालय की सैर करवाएंगे। ये सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह घर गया और उसने घर में सबको बोला कि कल हमें इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे पर जो मनाया जाएगा वो हमें म्यूज़ियम संग्रहालय दिखाने के लिए लेके जाएंगे। उसने रात को ही अपनी सारी तैयारी की, एक डायरी तैयार की, एक पेन पेंसिल तैयार की और अपने बैग में रख लिया ताकि वो कल संग्रहालय जब पहुंचेगा तो वहाँ जो जो चीज़ें देखेगा उसको वो लिखेगा। ऐसे करके जैसे दूसरे दिन स्कूल गए और संग्रहालय पहुँचते ही राहुल की आँखें आश्चर्य से चमक उठी। वहाँ के प्राचीन सिक्के, पुराने हथियार, राजाओं के शानदार वस्त्र और ऐतिहासिक चित्र बड़ी सुंदरता से सजाए गए थे। हर वस्तु मानो अपने भीतर एक अनकही कहानी समेटे हुई थी। बच्चों को ये भी समझाया गया कि संग्रहालय केवल पुरानी चीजों का भंडार नहीं है बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। राहुल कोने में रखी एक पुरानी तलवार के सामने रुक गया। वो सोचने लगा कि ये तलवार जरूर किसी बहादुर योद्धा की रही होगी जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े होंगे और उसकी आंखों के सामने वीरता के जो दृश्य आने लगे, उभरने लगे, उसे गर्व महसूस हुआ। थोड़ी ही दूर जाकर उसने एक सुंदर पेंटिंग देखी जिसमें एक शांत गांव का दृश्य दिखाया गया था। वहां लोग सरल जीवन जी रहे थे, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढ लेते थे। संग्रहालय की हर वस्तु उसे कुछ न कुछ सिखा रही थी, कुछ संदेश दे रही थी, कभी साहस, कभी सादगी, तो कभी अपनी जड़ों से जुड़े रहने का महत्व। संग्रहालय भ्रमण के अंत में राहुल के मन में विचार आया कि अगर हम अपने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो वो हम अपनी पहचान को खो देंगे। अगर हम अपने इतिहास और खो देंगे तो हम अपनी पहचान को खो बैठेंगे। उसने निश्चय किया कि वह अपने दोस्तों, अपने परिवार को भी संग्रहालय देखने के लिए जरूर बोलेगा और उन्हें प्रेरित करेगा। उस दिन राहुल ने सिर्फ एक संग्रहालय की सैर नहीं की बल्कि बच्चों उसने अतीत से जुड़ने का महत्व भी बहुत गहराई से समझा। इस तरह इंटरनेशनल म्यूजियम डे के उसके लिए एक ऐसा खास अनुभव बन गया, एक ऐसा खास दिन जिससे उसे अपनी विरासत को सजोने और उस पर गर्व करने की सीख मिली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी, हम जहाँ भी घूम के आए उन चीज़ों को हमें भी देखें, हमें भी कुछ इतिहास के बारे में, वीर योद्धाओं के बारे में हमें भी कुछ और अच्छी जानकारी मिली जिससे हमें गर्व महसूस हुआ। तो हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें अपनी विरासत को सजोकर रखना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये बाल गीत।

तो सुना बच्चों आपने अपनी पसंद का बाल गीत। तो बच्चों आज चर्चा करते हैं कि हमारे छोटे छोटे जो कदम हैं वो भी हमारी प्रकृति में हमारे घर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं हमारे घर से, फिर हमारे गली मोहल्ले से। तो बच्चों अभी छुट्टियों में आप बहुत घूम फिर के आए, तो साथ में आपने साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखा होगा। आपने अपने मम्मी की, अपने पापा की, अपने दादा दादी की खूब मदद की होगी। तो इन छोटे छोटे हाथों से जैसे घर में कहीं पे भी गंदगी हो तो आपने उसको साफ किया होगा, छत गंदी है तो उसको भी साफ किया होगा। और तो और बच्चों घर के अलावा हमें प्रकृति और गली मोहल्ले का भी ध्यान रखना चाहिए और हमारे साथ में पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमें बहुत प्यास लगती है वैसे भी उनको भी प्यास लगती है और भूख लगती है। तो बच्चों आपने ये अपने छोटे छोटे जो कदम है, हमारे जो छोटे छोटे हाथ है, उनसे आपने गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या किया? तो आपने ये किया होगा कि छत पे आपने पानी भर के रखा होगा, पक्षियों के लिए दाना रखा होगा, और तो घर की साफ सफाई। अगर हम अपने मोहल्ले की साफ सफाई हम अपने हाथों से करेंगे तो हमें देखकर एक के साथ दो, दो के साथ तीन, और तीन से छह, छह से दस होते कभी भी इन हाथों में कितने हाथ जुड़ जाएंगे। ऐसे करके हमें, हम अगर अपने बदलाव लाएंगे तो हमारे साथ भी छोटे तो क्या बड़े भी जुड़ जाएंगे। और इन छोटे छोटे कदमों से जो हम बदलाव ला सकते हैं वो ये है कि हमें भी अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं उनको नियमित रूप से उनकी देखरेख करना, उनकी मिट्टी बदलना, ठीक है, उनमें जो भी हमें खाद डालनी है वो डालना नियमित रूप से, और उनका रखरखाव भी करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर हमारे आसपास में कहीं पे भी बाग बगीचा है, कोई

बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, तो हमें हम सबको साथ मिलकर इन छोटे छोटे कदमों से हमें उस पार्क में जाना चाहिए और जहाँ पे भी हो हमें साफ सफाई करनी चाहिए। अगर हम 10 जने हैं 15 जने हैं, रोज अगर हम एक पौधा लगाएंगे और उसकी हम देख रेख खुद करेंगे, तो सोचो बच्चों अगर हम 10 जने भी गए तो हमने 10 पेड़ लगा दिए और उस 10 पेड़ों को उन पौधों को हम पानी देंगे तो हमारी प्रकृति कितनी सुंदर लगेगी और हमें नियमित रूप से जो स्वच्छ हवा है वो मिलेगी, हमें शुद्ध वायु मिलेगी, हमें व्यायाम करने के लिए एक स्थान मिलेगा, दूसरे जो लोग हैं उनको छांव मिलेगी आराम करने के लिए। अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हम भी एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो सीख यही कि बच्चों के पर्यावरण की अगर हम रक्षा करेंगे, हम सबकी ये जिम्मेदारी है और हमें ये रक्षा करनी भी चाहिए और छोटे प्रयास भी कभी कभी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये बालगीत।

तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बात एक बात होती है अपने आज की रोचक जानकारी, जो है चमगादड़ उल्टे लटक कर क्यों सोती है। चमगादड़ उल्टा इसलिए सोती है ताकि वे सुरक्षित रहे और आसानी से उड़ सके। चमगादड़ के उल्टे लटक कर सोने का मुख्य कारण उसकी विशेष शारीरिक बनावट है, जिस कारण वे जमीन से सीधे उड़ान नहीं भर सकते हैं। और उसके पैरों की जो ग्रिप होती है ना बच्चों, वो बहुत ही मजबूत होती है। जब वे किसी डाल या छत पर पकड़ते हैं तो उनके पैर अपने आप लॉक हो जाते हैं, इसलिए चमगादड़ उल्टी लटक कर सोती है। तो बच्चों, आज का हम अपना ये कार्यक्रम सुन रहे थे मुकुल, और आप ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी में आपका अपना कार्यक्रम मुकुल। और अनीता का आप सभी को ढेर सारा प्यार अब और जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुकुल। आज का ये कार्यक्रम लेकर आई थी श्रीमती अनीता जोशी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बज चुके हैं, ये समय है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना। फिल्म का नाम था आदि पुरुष। आवाजें थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम की।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें। तुरंत केवाईसी अपडेट

0: जाएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये गीत हमने लिया था फिल्म MS धोनी से, स्वर था पलक मुचाल का।
1: नमस्कार, मैं

0: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

फिल्म का नाम था जीरो। आवाजें थी सुखविंदर सिंह, दिव्या कुमार और साथियों की।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म किसी का भाई किसी की जान। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम। आवाज़ें कमाल खान और पलक मुचाल की है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है पर। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

जिंदगी तेरे नाम, जी हाँ ये है फिल्म का नाम। आवाज़ें वाजिद खान और सुनिधि चौहान की है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: श्रोताओं, आप सुनते हैं अनु मल्लिक के साथ सुनिधि चौहान को, फिल्म का नाम वक्त।

प्यारे मोहन, जी हाँ, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें सुनिधि चौहान और निकिता निगम की है।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है ये क्या हो रहा है। आवाजें के महालक्ष्मी और साथियों की है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के समय 10:55 होने को है। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा कार्यक्रम मन की बात में। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

0: अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे।

जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं

अपनी जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का

बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से

जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों,

साथियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है
आपके आसपास

0: की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमाननक्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भर भारतस्य च संकल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य संघटनस्य प्रयोगशालाः अथ भारतीयोद्योग सहभागिनः मिलित्वा निर्मितवन्तः। अर्थात् साम्प्रतं समुद्रात् आकाशपर्यन्तम् अस्माकं भारतं समधिकं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति। सखायः जून मासे एकम् अपरम् आयोजनम् अभवत् यस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं भारतस्य प्रयासैः सह संलग्नम् अभवत्। अपि च एषः कार्यक्रमः आसीत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्मिन् वर्षे विश्वस्य 5,000+ संख्याकेषु स्थानेषु योगस्य अनेकाः विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। अस्माकं देशे कोटिसंख्याकाः जनाः विविधस्थानेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागं कृतवन्तः। अस्मिन् मासे अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन चैम्पियनशिप इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः अपि अत्यधिका चर्चा जाता। अस्यां प्रतिस्पर्धायां भारतेन 14,100 संख्याकानि पदकानि विजितानि। एतेषु 2,100 संख्याकानि स्वर्ण पदकानि अपि सम्मिलितानि।

0: इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त दिन के 12:05 हो चुके हैं। आगे सुनते हैं आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:10 पे आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 12:40 पर।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे दिन के 1 बजे। महिला जगत कार्यक्रम होगा 1:05 पे। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। दोपहर समाचार आप सुन पाएंगे दोपहर 2:15 पे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 2:30 पर।

हमारे आज की दूसरी सभा में आप सुनेंगे शाम 5:05 पे युवाणी कार्यक्रम। हमारी इसी सभा में आप सुनेंगे शाम 6:05 पर फिल्म संगीत। ग्रामीण साथी कार्यक्रम सुन पाएंगे ग्रामीण जगत, माफ कीजिएगा, शाम 7 बजे आप सुनेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 12:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम जयपुर के आमिर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: साथियों हिंजर तमा बुधी रहया हुआ दुष्यंत आहुजा जी आवाज में ही सुनो भजन ए हाने असा भेंट वार्ता ता कयो श्री शंकरलाल आसनानी सा साथियों बुजुर्ग समाज जी धरोहर आहिन परिवार जी धुरी आहिन ए बारन लाए आशीर्वाद आहिन अजे प्रोग्राम बुजुर्गन जे लाए असा जीवन में छा पातो छा विनायो ए छा विरायो जे तहत आज असा भेंट वार्ता कंदासी श्री शंकरलाल आसनानी सा जेके एक समाज सेवी आहिन दादा स्वागत आहे तमान जो असांजे स्टूडियो में
1: नमस्कार
0: दादा सबनी खां पहरी असा जान चाहिंदासी त तमान जो जन्म कदे थियो किथे थियो ए तमान जी प्रारंभिक शिक्षा किथे थी
1: मुंजो जन्म जयपुर में ही सिंधी कॉलोनी राजा पार्क में थियो 3/12/54 मुंजी डेट ऑफ बर्थ आ ए मुंजी प्रारंभिक शिक्षा सिंधी प्राइमरी स्कूल आ सिंधी कॉलोनी में ही मुंजी शिक्षा थी
0: जी
1: इन खां अलावा इन खां पो मुंजी शिक्षा अग्रवाल कॉलेज में भी मां ग्रेजुएशन कई
0: जी त तमान जो जन्म जयपुर जो ही आहे
1: जी
0: ऐं तव्हां हिते ई पंहिंजी शिक्षा ग्रहण कई
1: जी
0: तव्हां पंहिंजे माइटनि जे बारे में ॿुधाईंदा की तव्हांजे माता पिता कहिड़े पेशे में हुआ
1: मुंहिंजे पिता साहब रेलवे सरकारी नौकिरी हुअसि रेलवे में ऐं मुंहिंजी माता गृहणी हुई उन जी प्रेरणा सां ई मां माता पिता जी प्रेरणा सां ई जेको बि आहियां अॼु आहियां गुरुजनि जे समाज जे जेको बि मां आहियां उन जी देन सां ई मुंहिंजे माता पिता जो शुरू खां वठी त मूंखे प्रेरणा मिली त मां शेवा कयूं ऐं हिते जेको जिते मां रहंदो आहियां सिंधी कॉलोनी राजा पार्क बिल्कुलु साम्हूं मंदरु बि ॾिठे ॾिठे मुंहिंजो ठहियो त इन मंदर में सभु ॿिए शेवा कंदा त मुंहिंजी बि प्रेरणा हुई मुंहिंजी माता बि चवंदी हुई हमेशह शेवा में लॻनि शेवा ई पाण कमु ईंदी शेवा में ई बल आहे शेवा में शक्ति आहे शेवा में ई पंहिंजी मन संतुष्टि आहे त मुंहिंजी मम्मी मूंखे चवंदी हुई हमेशह माता साहब त पाण शेवा कयूं पंहिंजे घर में जेको बि अचे उनखे ख़ुशि थी वञे ऐं का बि शइ पाण मिले त वंडे विराज खाइजे अकेले न खाइजे ईअं जेको बि असांजे घर में ईंदो हो उनखे असां पूरो सम्मान ॾींदासीं मुंहिंजे ऐं समाज जो माहौल बि जिते मां रहंदो आहियां अहिड़ो ई हो साम्हूं जीअं मंदरु ॿिए शेवा कंदा त मूंखे बि सुठा थींदी मां बि शेवा कयां
0: मतिलबु नंढपण खां ई तव्हांखे धार्मिक माहौल मिलियो ऐं जेके तव्हां ॿुधायो पिया की तव्हांजी माता तमामु धार्मिक प्रवृति जी हुई ऐं शुरू में ही तव्हांखे संस्कार सुठा पहल हुआ त तव्हांखे इहो लॻियो त मूंखे बि अॻियां वञी करे समाज सेवा करणी घुर्जे
1: जी
0: जीअं तव्हां ॿुधायो त तव्हांजो जनम हिते जो ई आहे ऐं तव्हांजी शिक्षा बि हिते ई थी ऐं तव्हांखे बचपन में संस्कार बि पंहिंजे माता पिता द्वारा ॾाढा सुठा मिलिया तव्हां असांखे ही ॿुधायो तव्हांजो पेशो छा हो सरकारी नौकरी या धंधो
1: मुंहिंजी सरकारी नौकरी लॻी 1975 में मां पढ़ंदे मुंहिंजी पढ़ाई पई कई अग्रवाल कॉलेज में स्टूडेंट ई हुयुसि त उन विच में मुंहिंजी टाइप स्पीड ॾाढी सुठी हुई ऐं मुंहिंजी जेको मां इंटेलिजेंट हुयुसि जेको मुंहिंजी जेकी पढ़ाई बि ॾाढी सुठी कयल हुई त उन पढ़ंदे अग्रवाल कॉलेज में पढ़ंदे मुंहिंजी 1975 में नौकरी लॻी सरकारी
0: मतिलबु तव्हां पढ़ाई में तमामु बहितर हुआ तमामु सुठा हुआ इन करे तव्हांजी पढ़ंदे ई सरकारी नौकरी लॻी वई
1: ग्रेजुएशन मां पोइ कई
0: जी त मतिलबु पढ़ाई कंदे ही तव्हांजी सरकारी नौकरी लॻी वई
1: जी
0: ऐं तमामु बहितरीन तव्हांखे सरकारी नौकरी त कुदरती लॻी वई पर छा तव्हांजे मन में सरकारी नौकरी करण जो ही मन हो या तव्हां ॿियो कुझु ठाहिण चाहींदा हुआ
1: मुंहिंजी बचपन खां इच्छा हुई त मां डॉक्टर ठहां या वॾो व्यापारी ठहां जंहिंमें मां समाज जी शेवा जेको बि दीन दुखी अचे मां शेवा कयां मुंहिंजी शेवा जी भावना जे मुंहिंजे माता पिता खां या मंदरु जेको साम्हूं हो कंदे मां ॿिए शेवा कंदे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी मां बि शेवा कयां त इहे डॉक्टर जेको पैसो थींदो या व्यापारी थींदो दान पुन करे या ॿियो ॿिए शेवा जे हथु बटाए सघूं था समाज सेवा करे सघूं था पैसो हूंदो त तॾहिं समाज सेवा सुठी थींदी बग़ैर पैसे वारा बि समाज सेवा कनि था त डॉक्टर जीअं पैसो आहे त उन में बि शेवा सुठी थींदी आहे
0: जी मतिलबु तव्हांजो मन हो डॉक्टर ठहण जो या वरी को बिज़नेसमैन ठहण जो ताकी मां डॉक्टर जे पेशे ज़रिए समाज जे नंढे तबक़नि जे माण्हुनि जी शेवा करे सघां जेके डॉक्टर जी फीस नथा ॾेई सघनि हुननि खे तव्हां फ्री में इलाज करे सघो या वरी वॾो बिज़नेसमैन ठहिण चाहींदा हुआ ताकी वधीक पैसा हूंदा त मां समाज जी शेवा ॿियो वधीक खुले हथ सां करे सघंदसि त ही तव्हांखे न मिलियो पर तव्हांखे सरकारी नौकरी मिली त अॼु जे परिप्रेक्ष्य में तव्हां केतिरा संतुष्ट आहियो हिन ॻाल्हि खां
1: मां ज़िंदगीअ में जेको बि मूंखे मिलियो आहे पूरी तरह संतुष्ट आहियां जेको मिलियो आहे ज़रूरत खां वधीक मूंखे मिलियो आहे मुंहिंजे हिसाब सां मां जेको न चाहींदो आहियां उहो बि मूंखे मिले थो मूंखे समाज सेवा मिली आहे सरकारी नौकरी मिली आहे जिते किथे जेके बि मूंखे समाज में मिलिया चाहे ऑफिस में मिलिया या जेके बि यानी कि यार दोस्त मिलिया मुंहिंजे मथां मुंहिंजे कम सां संतुष्ट आहे मुंहिंजी सेवा संतुष्ट आहे अहिड़ो को ॾींहुं कान आयो जेको मूंसां को नाराज़ हुजे मुंहिंजी सेवा सां मुंहिंजे कम सां ऐं जेको बि मां कमु खयो आहे कॾहिं बि जेको कमु मिलियो आहे मां पूरी ईमानदारी ऐं लगन महिनत सां कयो आहे ऐं मां चाहींदो आहियां त मूंखे जेको बि कमु मिले मां पूरी निष्ठा सां ऐं ईमानदारी महिनत सां कयां ऐं मूंखे इहो बि लॻंदो आहे त मां जेको बि कमु

0: खणा त वो जेको हार्ड कम हुजे जेको सभिनी खे हार्ड चवंदा आहिनि त मूंखे उहो कम खणण में वधीक मज़ो ईंदो आहे जेके भई कम कयल आहिनि उहे वरी मिलनि त वधीक मज़ो घटि ईंदो आहे पर जेको हार्ड कमु जेको नथो करे सघे त मां ख़ुशी ख़ुशी उहो कमु कंदो आहियां खणंदो आहियां ऐं उन में साईं अॼु ताईं सक्सेस कयो आहे कॾहिं बि को कमु मां खाली न वियो आहे
1: मतिलबु चुनौतियूं खणण जो तव्हांखे शौक़ु आहे न जेको कमु हार्ड हुजे या जेको कमु कठिन हुजे उहो करण जो तव्हांखे शौक़ु आहे ऐं उहो कमु झूलण तव्हांजो कराईंदो बि आहे त नौकरी जे दौरान छा तव्हांखे को अहिड़ो शख़्स मिलियो जंहिंखां तव्हां ॾाढा प्रेरित थिया हुजो
0: नौकरीअ में जेके बि मूंखे अफसर मिलिया या साथी मिलिया मुंहिंजा पूरे कम सां संतुष्ट हुआ ऐं जेको बि कमु मूंखे ॾींदा आहिनि ऐं जेके ॾींदा हुआ त मां ख़ुशी ख़ुशी ईअं न चवंदुसि भई फलाणे जो कमु आहे त हू करे हिन जो कमु आहे हू करे मूंखे ॿिए कंहिंजो बि कमु ॾींदो जेको बि ॾींदो अॼु बि जेको मूंखे कमु जेको बि ॾींदो आहे जेको मां ख़ुशी ख़ुशी राज़ी ख़ुशी ऐं ख़ुशी ख़ुशी कंदो आहियां छो कमु करिणो मूंखे ई आहे मूंखे त कमु मूंखे ई करिणो आहे त इन करे त मां ख़ुशी ख़ुशी कयां त वधीक मज़ो ईंदो आहे ऐं कमु केरु रोई करे या न करे लिंघाए करे करे करिणो त पाण खे ई आहे त इन करे हमेशह ख़ुशी करे ख़ुशी कमु कंदासीं त पाण खे वधीक मज़ो ईंदो आनंद मिलंदो कमु बि टाइम पूरो थींदो ऐं पंहिंजे मन जी संतुष्टी थींदी
1: हीउ तमामु सुठो दादा तव्हां ॿुधायो जो कमु करिणो ई आहे त ख़ुशीअ सां कजे ताकी पाण खे बि संतुष्टी मिले ऐं कमु बि सुठो थिए दादा सॼी नौकरी जो तव्हांजो तव्हां सफ़र ॿुधायो की धार्मिक प्रवृत्ति जी माता हुई ऐं उनखां पोइ तव्हांजी नौकरी लॻी सेवा जी भावना तव्हां में शुरू सां ई हुई त समाज सेवा खां त तव्हांजो जुड़ाव थियो पर छा तव्हांजी कॉलोनीअ में या तव्हां ॿुधायो पिया की तव्हांखे तमामु अहिड़ा माण्हू मिलिया जंहिंखां तव्हांखे समाज सेवा जी तरफ़ जुड़ाव थियो आहे त समाज सेवा पूरी तरह सां तव्हां रिटायरमेंट खां पोइ समाज सेवा जी तरफ़ लॻिया या वरी शुरू खां ई लॻिया
0: मां बचपन खां ई मंदर में जेको साम्हूं असांजो ठहियो मुंहिंजे साम्हूं ई ठहियो मंदरु उन में वेंदा हुआसीं पर जीअं 1980 खां जीअं नौकरी लॻी हुई उन खां पहिरीं मां जुड़ियल हुउसि पर 1981 में मूंखे केशर जे पते हिते उन खां पोइ मां वधीक जुड़ी हुउसि ऐं उन खां पोइ मूंखे सेक्रेटरी बि ठाहिनि अॼु तॾहिं खां वठी मां 1980 खां जुड़ियुसि ऐं शेवाऊं बि कंदो हुउसि ऐं नौकरी बि कंदो हुउसि ऐं घर जेकी स्थिति हुई मां संभालींदो हुउसि घर त चवण जो मतिलबु मुंहिंजो अॼु बि जेको लगाव आहे मंदर प्रति आहे शेवा बि आहे नौकरी घर ईंदो आहे त घर जी लेकिन मंदर में ईंदो आहियां त मंदर पूरी समर्पित लगन सां कंदो आहियां त ऐं मां ॿियनि खे बि चवंदो आहियां त तव्हां कयो त पूरी लगन सां कयो त उनजो साईं पाण खे फल ॾिए थो त कृष्ण मास्तर जेको स्वर्गवासी हुआ उहे चवंदो आहे शेवा कंहिंजी बि अजाई न वेंदी आहे ऐं मुंहिंजी माता बि चवंदी आहे तव्हां जेके बि शेवा कंदो उन शेवा जो फल पाण खे ज़रूरु मिलंदो आहे कॾहिं बि शेवा कंहिंजी निष्फल कान वई आहे न को वेंदी
1: तमामु सुठो त तव्हांजी जेकी समाज सेवा जी भावना आहे उहो बचपन खां वठी हुई पर तव्हां रिटायरमेंट खां पोइ पूरी तरह सां समाज जे प्रति समर्पित थी विया आहियो ऐं पंहिंजो चङो वक़्तु मंदिर ऐं समाज जी सेवा लाइ समर्पित कंदा आहियो त मूंखे हीउ ॿुधायो की तव्हां जीअं प्रोग्राम कंदा आहियो जीअं चेटीचंड जा प्रोग्राम या कंहिं त्योहार ते तव्हां सिंधी प्रोग्राम कंदा आहियो या वरी जेके बि मंदर में प्रोग्राम कंदा आहियो हुनजो उद्देश्य छा आहे ऐं कहिड़ा कहिड़ा प्रोग्राम कंदा आहियो तव्हां
0: असांजो उद्देश्य मंदर में सनातन धर्म कायम रहे ऐं मंदर में जेके बि पंहिंजो मंदर सिंधी झूलेलाल मंदरु आहे त झूलेलाल में जेके बि मंदर में अचनि था क़रीब क़रीब श्रद्धालू जेके बि ईंदा आहिनि असांजा 12 महीना ई 365 ॾींहं 270 प्रोग्राम ॾींहं क़रीब क़रीब असांजे मंदर में प्रोग्राम रहंदा आहिनि हिन में चेटीचंड थियो स्वामी टेऊंराम चालीहो थियो श्री झूलेलाल चालीहो थियो जीअं हींअर गणेश उत्सव थियो हींअर कारक थींदा ऐं जन्माष्टमी थींदी जेके बि सिंधी पर्व आहिनि जे तीजड़ी थी ऐं नंढी सतह वॾी सतह त इहे जेके बि सिंधी कार्यक्रम आहिनि इहे सभु हिन मंदर में कंदा आहियूं ताकी संगत जुड़े जेके पाण कंदा आहियूं सिंधीअ में प्रोग्राम कयूं सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधीअ में भॼन ॻाईंदा आहियूं सिंधी ईंदा आहिनि ॿार बि माताऊं वठी ईंदियूं आहिनि वॾा बि ईंदा आहिनि त इन सां सिंधियुनि में सिंधीअ ते वाधारो थींदो आहे सिंधी ॻाल्हाइणु सिखंदा आहियूं जेके ॿार न बि ॻाल्हाईंदा आहिनि त सिंधीअ में भॼन ॻाईंदा आहिनि असां ॻाराईंदा आहिनि ऐं भॼन बि ॻाईंदा आहियूं सिंधीअ में ऐं माताऊं बि असां भॼन ॻाईंदियूं आहिनि ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधीअ में ऐं हिंदी ॾाढी घटि आहे त इन सां प्रेरणा थी वञे त सिंधीअ ते जिंदियत रहे सिंधी जिंदियत रहे ऐं जेके बि सिंधियुनि जा प्रोग्राम थींदा आहिनि जेके बि सिंधी जा प्रोग्राम सिंधियुनि जा पंहिंजा त्योहार आहिनि सभु हिते हिन मंदर में मल्हाईंदा आहियूं
1: जी तमामु बहितर दादा सिंधियत खे त तव्हां वधाइण जो कमु करे रहिया आहियो पर कुझु अहिड़ा कम बि तव्हां करे रहिया आहियो जो समाज जो जेको हेठो तबिको आहे हुनजे कल्याण लाइ बि तव्हां अन्न क्षेत्र जो बि हलाए रहिया आहियो प्रोग्राम ऐं हुन जे अलावा जेके तमामु ग़रीब जेके असांजे समाज जा माण्हू आहिनि हुननि जी बि सहायता करे रहिया आहियो
0: हिन मंदर में पिछले 6 सालनि खां अनखेत्र हलंदो आहे सुबुह जो रोज़ हिकु पुला साहब जी देग ठहंदी आहे उहो जेके असां विराईंदा आहियूं उहो मुख्य साध साहिब आहिनि साध पुसणाराम सेवा मंडल उन्हनि जे सहयोग सां हलंदी आहे ॿियो ॿी संगत बि मिली करे कंदा आहियूं मंदर मां पैसा न कढंदा आहियूं संगत ई पैसा कढंदी आहे उहो रोज़ 365 ॾींहं ई उहा पुलाउ जी देग जीअं अमरापुर में ठहंदी आहे तीअं ठहंदी आहे हिते ऐं जेके बि प्रोग्राम थींदा आहिनि असां जीअं अनखेत्र हलंदो आहे

0: माताउनि खे जेके आहिनि जेके हुन हर महीने राशन ॾींदा आहियूं। इन खां अलावा असां हलाणी दरबार जो जेको मूंखे मार्गदर्शन मिलियो त असां हर साल चेटी चंड ते पहिरीं 51 कयासीं, पोइ वधंदे वधंदे हिन भेरे 81 हुआ जणिया पाईंदा आहियूं। जेके इन जणियनि में जेके अहिड़ा बालक हुआ जा अहिड़ा हिन भेरे ॿिनि सालनि खां अहिड़ा नज़र अचनि पिया, टीह साल थिया आहिनि, पैसे चकर में हू पंहिंजो जणिया न पाए सघिया या उत्सव न करे सघिया, त उन्हनि हिते जणिया पाता ऐं जणिया पाता हुननि में सुख पातनि ऐं उन्हनि जूं दुआऊं जेके मिलनि थियूं, लंगर वग़ैरह व्यवस्था थींदी आहे, त हीअ जेके असांखे सहायता ॾींदा आहिनि, इन सां जेके मंदर जो उत्थान थींदो आहे। इन खां अलावा जेको बि कन्या जेके जंहिंखे न आहे पैसो उनखे असां मंदर मां थोरी सहायता कंदा आहियूं, त उनजी ऐं धर्मशालाऊं जेके आहिनि असां धर्मशाला में बि डिस्काउंट कंदा आहियूं, त उनजो जा फ्री बि ॾींदा आहियूं। जेके पैसा नथी ॾेई सघे त असांजे मंदर में करे भली भई जेके नियाणी शादी करे न करे नथी करे भई सघे त उन परिवार स्थिति। इन खां अलावा जेको अॼु मेन जेको हिन मंदर में असां हलायूं वठा न त हीअ जेको जणियुनि जो प्रोग्राम आहे 2020 खां स्टार्ट थियो आहे, पंजो साल थियो, त इन में ॾाढो मूंखे यानी कि मन में ख़ुशी थी ऐं माण्हुनि जी दुआऊं लॻियूं जेके ॿटीह साल ताईं पंहिंजे जणिया न पाए सघनि कहिड़े बि समय ते, हिन जणिया पातनि ऐं हुन जो परिवार बि ख़ुशि असां बि ख़ुशि ऐं इन घटि में घटि यानी अॼु ताईं 5 सालनि में 500 माण्हुनि जणिया पाए चुका आहिनि। इनमें ऐं हर साल प्रोग्राम चेटीचंड जे पुठियां रखंदा आहियूं ऐं चेटीचंड जे पखवाड़ो असांजो 1.5 महीनो हलंदो आहे, 22 फरवरी खां चेटीचंड
1: जी। मतिलबु चवण जो मतिलबु आहे समाज जे हेठे तबिके जो तव्हां आर्थिक रूप सां हुननि जी मदद कंदा आहियो, जेके माण्हू पंहिंजो उत्सव नथा करे सघनि त हुननि खे जणिया पाराए आर्थिक रूप सां मदद कंदा आहियो, जेके नियाणियूं शादी करण में असमर्थन मतिलबु आर्थिक रूप सां त हुननि खे आर्थिक सहायता कंदा आहियो, चाहे हू धर्मशाला उपलब्ध कराए हुजे या हुननि खे कपिड़ा या वरी समाज जो पूरो सहयोग करे रहिया आहियो, त हीअ तमामु बहितरीन ॻाल्हि आहे। ऐं वरी मां ॾिठो आहे की असां सिंधी न रुगो सिंधियुनि जी बल्कि पूरे विश्व जी चाहे केर भी हुजे इंसानियत जो धर्म निभाईंदा आहियूं, चाहे हू कहिड़ी भी जाति धर्म या वर्ग जो हुजे असां हुननि सभिनी जी शेवा कंदा आहियूं। ऐं ज़रूरी न आहे त हू सिंधी नियाणी हुजे, अगरि हू ॿिए धर्म जी बि आहे तॾहिं बि असां हुनखे आर्थिक मदद कंदा आहियूं। त दादा तमामु बहितरीन तव्हां खां ॻाल्हाए ॾाढो बढ़िया लॻियो, पर मां तव्हां खां पुछण चाहींदसि समाज खे तव्हां छा संदेश ॾियणु चाहींदा?
0: समाज में संदेश इहो ई आहे त शेवा कयूं, शेवा जा मेवा पाण खे साईं पाण ॾींदो। शेवा ऐं सच ॻाल्हाइजे, को बि कमु कजे कंहिंसां दोखो न कजे, सभु सच ॻाल्हाइजे ऐं शेवा कजे, शेवा में ई शक्ति आहे, शेवा में ई बल आहे, ऐं सभिनि सां मिठो ॻाल्हाइजे, कंहिंसां कपट न कजे। मेन ॻाल्हि त कपट कंहिंसां न कजे, भली साम्हूं चई छॾे सच बुरो लॻे दिक़त कान्हे, कपट कंहिंसां न कजे
1: जी। तमामु बहितरीन दादा तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी मां असांखे आज़मूदनि सां असांखे ॿुधायो आहे त सेवा में ई शक्ति आहे ऐं छल कपट खां दूरि रहिजे। इन खां सवाइ जेकी असांजे मन में जेकी संतुष्टी मिलंदी आहे हिननि शयुनि सां हुननि जो को मोल कान्हे। त अॼु तव्हां तमामु बहितरीन तरीक़े सां असांखे पंहिंजे जीवन जा आज़मूदा ॿुधाया ऐं असांखे ॿुधायो की असां कीअं शयूं अपनाए करे पंहिंजे जीवन खे सार्थक बणाए सघूं था, जीअं की तव्हां सेवा ॿुधाई, तव्हां सभिनी जो जेकी समाज सेवा में आर्थिक रूप सां मदद हुजे, चाहे सभिनी सां कलेक्ट करे बि तव्हां सभिनी खे जोड़ो था समाज सां, समाज में जेको तव्हां धन एकत्रित करो था हेठे तबिके लाइ ताकी हू पंहिंजो सर मथे करे जी सघनि ऐं हुननि खे बि ओतिरो ही सम्मान मिली सघे जेतिरो की हू हक़दार आहिनि।
0: मूंखे हर खेत्र में हर को न को माण्हू मूंखे मिले थो, मुंहिंजो कॾहिं हथ रुकियो कोन्हे। हालांकि मंदर में असांजे बिल्कुलु आर्थिक रूप सां ॾाढो घटि आहे, लेकिन को बि कमु असां हथ में खयो आहे त जेके मददगार ईंदा आहिनि, मदद पाणे कंदा आहिनि, बग़ैर घुरे ई कंदा आहिनि, ऐं असांजो कमु झूलण पाणे असां मां पाण सोचींदो आहियां हीउ कमु जे हींअर असां मंदर में विस्तार सत्संग हाल जो विस्तार पिया कयूं, ओॾी महिल असांखे ॾाढा घटि हुआ, त मूंखे ॿियनि माण्हुनि चयो त कमु शुरू कर ऐं पाणे ईंदो ऐं पाणे हले पियो। मां सपने में बि कान सोचियो त हीउ विस्तार जो कमु हलंदो वेंदो, त ॼण मतिलबु जेको बि मां मंदर लाइ को बि सोचींदो आहियां भई हीउ कमु थियणु खपे ऐं पाणे थींदो। जॾहिं मां हिन तव्हांखे निवेदन कंदुसि धर्मशाला में केशियर ठहियसि 1980 में, तॾहिं खाली ॿ कमरा हूंदा हुआ हिन कम इन हाल में ऐं नंढो अॻियां मंदरु ठहियलु। हीउ सभु पोइ साईं जी कृपा सां अलाए कीअं पियो थिए, ॾियण वारो साईं वठणु साईं ऐं जंहिं इच्छा मुंहिंजी आहे त भई हीअ ठहणु खपे, त कुदरती उहो ई साईं पाण ई कराईंदो आहे ऐं ॾींहुं पोइ ॾींहुं मंदरु असांजो वधे वेठो हर खेत्र में, चाहे विकास में, चाहे भई यानी की धर्म धार्मिक कमु करण जे रूप में, जीअं जणा था पायूं, अन खेत था लाहियूं या मदद था कयूं, त ॼे थो ॿिए थो असां त हस जस आहे, लेकिन असांखे संतुष्टि आहे असां जेको बि कमु सोचूं था उहो पाणे थो थी वञे, कीअं थो थिए मां ख़ुदि ई अचरज में हूंदो आहियां।
1: चवंदा आहिनि न असांजी भावना अगरि शुद्ध थींदी आहे त भॻवान बि असांखे साथ ॾींदो आहे ऐं पूरी जेकी दुनिया आहे हू बि असांखे साथ ॾींदी आहे, त सुठे कम लाइ असांखे हर कोई साथ ॾींदो आहे ऐं तव्हांजो बि साथ सभिनीनि ॾिनो। तव्हां असांजे

0: स्टूडियो में आया ऐं तव्हां असांखे हेतिरी सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं तव्हांजा लख लख शुक्राना
1: महिरबानी तव्हां असांखे मूंखे घुरायो तव्हांजो वॾो वॾो थोरातो आहियां मां हिन मंदर जे प्रति तव्हां पुछो शेवा जे बारे में पुछो मां हमेशा तव्हांजो शुक्रगुज़ार रहंदुसि ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां सभिनि लाइ जेके मूंखे कहिड़े बि रूप में साथ पिया कनि था
0: धन्यवाद साथियूं हींअर तव्हां ॿुधी रहिया हुआ भेट वार्ता श्री शंकर लाल आसनानी सां ऐं हाणे असां ॿुधूं था ही सुहिणो भॼन

0: सिंध जी सुरहान ए हिंद जी नवान सिंधियों जी शान बुधंदा रहो आकाशवाणी ता सिंधी प्रोग्राम।
1: जी हां श्रोताओं, हमारे केंद्र से सिंधी कार्यक्रम आप सुनते हैं मंगलवार
2: गुरुवार
3: और रविवार जी।
0: पहंजे माजी सागर हेन वक्त के भी सराहिंदासी पहंजी पहचान मुजिब कणमा मान ठाहिंदासी सबनी सिंधियों जे दिल जी आवाज बुधाइंदासी बुधंदा रहो पहंजो सिंधी प्रोग्राम।
1: सुनना न भूलिए मंगलवार
2: गुरुवार
3: और रविवार जे
0: सिंधी प्रोग्राम।
4: साथियों हिनर तमा बुधी रहा हुआ कमला केसवानी जी आवाज में ही सुनो भजन। साथियों अज आहे 28 जून ए 28 जून जो हर साल राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिहाड़ो मलायो वेंदो आहे। इन दिहाड़े के मलायण जो खास उद्देश्य मानुन के जीवन तंदुरुस्ती ए संपत्ति लाए सही बीमा पॉलिसी जे महत्व जे बारे में सुजाग करना आहे ताकि हु मुसीबत जे हालातन में वित्तीय सुरक्षा ए मानसिक शांति हासिल करे सगन। ही दिहाड़ो मानुन के पेंजी वर्तमान बीमा पॉलिसी जी जांच करना ए ही पक करण लाए प्रोत्साहित कंदो आहे कि हुनन जो कवरेज हुनन जी अजो की जरूरतन जे सार पर्याप्त आहे या न। ए हाने साथियों घड़ी जी सुई इशारो करे पी वक्त पूरो थेण जो वरी गर जानी थींदी सिंधी प्रोग्राम में तेसी ताई हेमा मलानी के दींदा मोकल। नमस्कार।

यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 12:40 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

सत्ते पे सत्ता। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना और ये आवाजें थी किशोर कुमार, आरडी बर्मन, भूपेंद्र और सपन चक्रवर्ती की। आइए अगला गीत सुनते हैं और ये फिल्म है दो रास्ते। आवाजें हैं मोहम्मद रफी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

यह बस थी मोहम्मद रफी की और फिल्म हिरन राजा। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वर्षा काल के दौरान बारिश की एक एक बूंद को बचाने और कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने जून महीने के दौरान देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है और देश आज समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर

0: भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने, कुछ समय के लिए सोना नहीं खरीदने और विदेशों में छुट्टियां मनाने से बचने के लिए बीते दिनों किए गए अपने आग्रह पर देशवासियों से मिले समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश का हर नागरिक वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहा है।
0: मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचे, कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूँ कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए योजना की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी एक दूसरे तक साझा करने की अपील की। उन्होंने अंधविश्वास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर धारणाओं को बदलने को कहा। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति तथा भारतीय ज्ञान भाषाओं के संरक्षण में काम लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। आकाशवाणी के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजस्थान सहित देश भर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 59,000 से अधिक बूथों पर ये दवा पिलाई जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मोबाइल और ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री नरसिम्हा राव को 90 के दशक में वैश्विक संकट और मंदी के दौर में भारत को सुरक्षित रूप से बाहर रखने पर कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश के महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों पर चयन के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 1:05 मिनट हो चुके हैं। आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

0: स्वागत है सखियों आपका अपने कार्यक्रम महिला जगत में। मैं रेखा आचार्य
1: और मैं सपना व्यास। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। रेखा, कहते हैं ना कि घर बड़ा होने से नहीं, मन बड़ा होने से परिवार बनता है। जहां अपनापन हो, एक दूसरे के परवाह हो और साथ बैठकर सुख दुख बांटे जाए, वही जीवन की असली खुशियां बसती है। क्यों रेखा?
0: बिल्कुल सही कहा सपना तुमने। घर केवल ईंटों पत्थरों से ही नहीं बनता, बल्कि प्यार, विश्वास, संस्कार और एक दूसरे के सहयोग से घर सचमुच घर बनता है।
1: बिल्कुल रेखा, पहले के समय में जहाँ दिन भर के काम के बाद भी पूरा परिवार शाम को इकट्ठा होकर एक साथ बैठता था, क्यों रेखा? और बच्चे दादा दादी से बात भी करते थे, उनसे कहानियां भी सुनते थे। वे भी अपने अनुभव उनकी सुनाते थे, उनको सुनते भी थे। कहानियों के माध्यम से छोटी छोटी बातों में भी बड़ी सीख बच्चों को सिखा देते थे।
0: पर देखो ना, जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है।
1: बिल्कुल,
0: हर किसी के पास काम तो बहुत है, एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है। ऐसे में कभी कभी मन करता है कि थोड़ी देर रुके, बैठे और अपने लोगों से दिल की बातें करें।
1: और रेखा, शायद रेखा यही कारण है कि हम इस महिला जगत के कार्यक्रम के माध्यम से मिलने आते हैं अपनी सखियों से, जहां जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें, उपयोगी जानकारियां और नए विचार और प्रेरणादायक संदेश लेकर हम हर बार आपके बीच आते हैं। क्यों
0: रेखा? हाँ सपना, परिवार की खुशियां, बच्चों की मुस्कान, महिलाओं का आत्मसम्मान और स्वस्थ जीवन, इन्हीं छोटी छोटी बातें जो कि बहुत ही बड़ी है, इन पर, इन्हीं विषयों पर सार्थक चर्चा करने आते हैं। और यही बात तो हमारे परिवार और समाज को मजबूत भी बनाती है।
1: तो सखियों, कुछ पल अपने लिए निकालिए, काम करते करते हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। तो हो सके तो इसमें जिंदगी बिता ले,
0: पल ये भी जाने वाला है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रेखा कहते हैं ना कि जिस घर की महिलाएं आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होती है तो उस घर में खुशहाली और अपने आप दस्तक देती है। क्यों?
3: बिल्कुल, आज की महिला हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका दिन ब दिन बढ़ रही है। आज महिला राजनीति, बिजनेस, कला, खेल, विज्ञान सब में नए नए आयाम घड़ रही है। यहाँ तक कि सेना, जिसे संवेदनशील क्षेत्र में भी मतलब कि माना जाता है, उसमें महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमा पर तैनात उसकी रक्षा कर रही है। और जब महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है ना, तो उसकी असली ताकत, उसका जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाता है।
2: बिल्कुल सही कह रही हो रेखा कि भाई आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और आर्थिक आजादी केवल कमाई का नाम नहीं बल्कि अपने फैसले स्वयं लेने और आत्मविश्वास यानी परिवार की जरूरतों में सहयोग और सम्मान के साथ स्वयं जीने का अधिकार भी है। और रेखा, जब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होती है ना, तो उसका पूरा परिवार ही नहीं मतलब पूरा समाज भी आगे बढ़ता है।
3: बिल्कुल सही बात है सपना। पर आज भी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा शोषण का शिकार हो रहा है। यह शोषण अक्सर घरों में देखते हैं हम, घरेलू हिंसा के रूप में, ऑफिस जहाँ वह कार्य कर रही है, यहाँ तक कि सड़कों पर, और अब तो ऑनलाइन जमाना है तो कहीं कहीं वह इसके चपेट में भी आ जाती है। आज भी वह पुरुष प्रधान मानसिकता से जकड़ी हुई है, पर अब उसे स्वयं को इस मानसिकता से, इस शोषण से मुक्ति पानी होगी।

0: सरकार भी उनके साथ है, बस अब जरूरत है उसको दुगनी ताकत से इस आर्थिक आजादी के अधिकार को पाना।
1: बिल्कुल सही बात कह रही हो रेखा। जब महिला एक आत्मनिर्भर महिला बनती है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वह घर के वित्तीय कामों का जो प्रबंधन है वो कर जानती है और दूसरों पर निर्भर होने की बजाय वह अपनी जरूरत खुद पूरी कर सकती है, यानी बिना किसी को जवाब दिए वह अपने पैसों को स्वयं खर्च कर सकती है और अपनी पसंद का जीवन भी जी सकती है।
0: सही कह रहे हो। और तो और वह अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती है और पूरा परिवार विकास की राह पर आगे बढ़ता है। इसलिए सखियों, अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उनमें कोई फर्क ना करते हुए समान शिक्षा और संस्कार दो। दोनों को समान रूप से पलवित और पुष्पित करो। उम्र कोई भी उम्र, जैसे आपका कोई भी उम्र हो, कोई भी उम्र का पड़ाव हो, पर कुछ ना कुछ सीखते रहो। आर्थिक आजादी हर महिला का अधिकार है और आत्मनिर्भर महिला ही सशक्त परिवार और सशक्त भारत की पहचान है।
1: बिल्कुल।
0: तो बहनों, अब सुने कार्यक्रम का यह गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बहनों, अभी हमने बात की आर्थिक आजादी की, जो कि हम सब महिलाओं का अधिकार है। रेखा, हम महिलाएं हर काम में आगे हैं, घर परिवार भी हम संभाल रही हैं, बच्चों को भी हम संभाल रही हैं, और हम रसोई के बजट से भी पैसों को भी बचाना भी बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन बहनों, जब बात बैंक की काम की आती है ना, कागजातों की आती है या पैसों की को सही को कई जगह जमा कराने की आती है, तो हम अक्सर पीछे हट जाती हैं और सोचते हैं कि ये तो काम घर के पुरुष ही संभालेंगे। पर सखियों, आज का समय देखो बदल गया है रेखा, क्यों? और आज के समय में बहुत जरूरी हो गया कि हर महिला को पैसों के लेन देन की, बैंक की योजनाओं की और बचत की सही समझ हो। और संकट के समय में हाथ में रखी पूंजी ही सबसे बड़ी ताकत बनती है, तो इसलिए महिलाओं का आर्थिक रूप से जागरूक होना, अपने अधिकारों को जानना और खुद के फैसले खुद लेना, ये बेहद जरूरी है। तो बहनों, इसी विषय पर सुनिए ये वार्ता। वार्ता का विषय है महिलाओं में वित्तीय साक्षरता, आज की आवश्यकता। वार्ताकार है श्रीमती गुंजन चोपड़ा, प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन है श्री अमित सिंह का।
2: यदि विष्णु रूपी पुरुष घर का मुखिया कहलाता है तो नारी का दर्जा लक्ष्मी स्वरूपा है। पुरुष यदि धन का अर्जन करता है तो महिलाएं धन के प्रबंधन का कार्य करती हैं। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या केवल धन कमाना ही पर्याप्त है? केवल धन अर्जन करना ही आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है? शायद नहीं। केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं होता, जब तक ये जानकारी ना हो कि धन को कहाँ खर्च करना है तथा कहाँ बचाना है। वर्तमान समय में यह जानकारी और भी अधिक आवश्यक हो जाती है यदि कमाई के साधन असीमित हों। असीमित साधन होने पर खर्च के अनेक रास्ते खुल जाते हैं, परंतु यदि महिलाएं वित्तीय रूप से साक्षर हों तो काफ़ी हद तक इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। और वैसे भी कहते हैं कि आज की बचत कल की सुरक्षा है। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है धन का सही उपयोग, बचत और बजट के अनुसार निर्णय लेने की सही समझ। वित्तीय साक्षरता आर्थिक बदलावों के सागर में एक नक्शे और कंपास की तरह है, जहां आपको पता होगा कि आपको कहां जाना है और वहां कैसे पहुंचना है। वित्तीय साक्षरता का मूल उद्देश्य नारी को आर्थिक निर्भरता के बंधनों से मुक्त कर उसे इस काबिल बनाना है कि वह अपने परिवार एवं राष्ट्र की आर्थिक मजबूती में योगदान दे सके। वित्त का क्षेत्र हमेशा चुनौती लेकर आता है तथा हमें गतिशील आर्थिक परिदृश्य में क्या हो रहा है की समझ भी देता है। यदि हम वित्तीय रूप से साक्षर हैं तो हर चुनौतीपूर्ण क्षेत्र का सामना आसानी से कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता केवल धन कमाने की कला ही नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य बनाने की शक्ति है। धन का अर्जन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है धन का नियोजन कर आर्थिक संकट में अपने परिवार को सुरक्षित रखना। एक महिला का यह जन्मजात गुण है कि किसी कार्य को करने के लिए कितना धन खर्च किया जाना है, कहाँ धन खर्च करना है तथा किस तरह धन का नियोजन कर अपने परिवार को सुदृढ़ करना है। जिन घरों में महिलाएं वित्त मंत्री की भूमिका निभाती हैं, उस घर की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। महिलाएं खर्चों का प्रबंधन बेहद सहज तरीके से कर भविष्य के लिए बचत कर अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ान देने की शक्ति रखती हैं। महिलाएं घर की रीढ़ होती हैं, परिवार का केंद्र होती हैं। बच्चे अपने पिता की तुलना में अपनी माता से अधिक प्रभावित होते हैं। अधिकतर समय वह अपनी माँ के साथ व्यतीत करते हैं। इसीलिए महिलाओं का वित्तीय रूप से साक्षर होना बच्चों को बचपन से ही धन की सही कीमत और प्रबंधन सिखाने में मदद करता है।

से आने वाली पीढ़ी में वित्तीय अनुशासन विकसित होता है। हमारी माताओं, बहनों, दादी, नानी को वित्त प्रबंधन का हुनर था। वे हमेशा परिवार के खर्चों को सुचारू रूप से चलाते हुए परिवार के सुख दुख के लिए पैसे बचा कर रखती थीं, जिसे वे आवश्यकता के समय देकर अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़ी रहती थीं। उनकी दूरदर्शिता, पैसे बचाने की कला ने कई बार अपने परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक संकट का मुकाबला सहजता से किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वित्तीय साक्षरता का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि महिला दो परिवारों को जोड़ती है, अतः इसके परिणाम भी तीव्रगामी होते हैं। जब महिलाएं धन को लेकर सुरक्षा और आत्मविश्वास महसूस करती हैं, तो इसका असर पूरे परिवार और समुदाय पर भी पड़ता है और इससे अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। डिजिटल युग की आधुनिक महिला होने के नाते अब हमारी बारी है कि हम बचत के साथ साथ धन का सही निवेश कर सफलता की राह पर आगे बढ़ें। महिलाएं हमारे समाज का आधार है, एक गहरी जड़ है, और वैसे भी आज की नारी मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबान है इस कायनात की। महिलाएं वित्तीय साक्षरता के द्वारा परिवार, समाज और राष्ट्र के हर पहलू को ताकतवर और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। एक मजबूत वित्तीय शिक्षा की व्यवस्था महिलाओं को प्रभावी ढंग से अपनी बचत और निवेश का प्रबंधन करने में सहायक हो सकती है। महिलाएं इस विषय को महत्वपूर्ण मानती हैं और इसके प्रति जागरूकता रखती हैं, परंतु प्रकृति द्वारा उन्हें प्रदत्त धन नियोजन के कौशल का उतना प्रभावशाली तरीके से उपयोग नहीं हो पाता जितना कि वास्तव में होना चाहिए। कभी कभी घर के कामकाज, बच्चों का लालन पोषण एवं अन्य कारण भी उनकी पहुंच वित्तीय कौशल तक नहीं होने देते। किसी ने सही कहा है कि ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है, जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं और हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है, परंतु वित्तीय ज्ञान एवं प्रबंधन की अनभिज्ञता का परिणाम यह होता है कि विभिन्न योजनाएं जो केवल महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही हैं, का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता, या फिर पता चलता है तो उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। अतः इस विषय के प्रति गंभीरता से चिंतन और मनन करना चाहिए। आज के समय की यही मांग है कि महिलाओं को अपने समस्त अधिकारों के प्रति स्वयं सचेत होने की जरूरत है। आज महिलाएं घर, परिवार, दफ्तर सभी में तारतम्यता बनाकर अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं, तो फिर केवल इसी क्षेत्र में क्यों पीछे रहा जाए। जरूरत बस इस बात की है कि जिन महिलाओं को बैंक और वित्तीय कामकाज की जानकारी नहीं है, उन्हें आगे बढ़कर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम बैंक अकाउंट खोलना, चेक भरना, एटीएम का उपयोग करना, ऑनलाइन भुगतान करना आदि जैसी सामान्य कामकाजी बातों की जानकारी आज के डिजिटल युग में बहुत ही जरूरी हो गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था कि किसी भी राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति देखकर आप उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बैंक सखी, बीमा सखी, लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना आदि का संचालन किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता योजना नामक एक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्कूल कॉलेज की छात्राओं, ग्रामीण महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्षित समूहों में केंद्रीय बैंक और सरकारी बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में जानकारी देना है, जिसके द्वारा महिलाएं प्रभावी ढंग से अपनी बचत और निवेश का प्रबंधन आसानी से अधिक लाभ कमा सकती हैं और ऊंचाइयों की नई बुलंदियों को छू सकती हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, कई बार महिलाओं को इस डिजिटल युग में वित्तीय साक्षरता का ज्ञान ना होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उनके वित्तीय साक्षरता के अल्प ज्ञान के कारण उनके खाते से बड़ी रकम का गबन भी हो जाता है। थोड़ा बहुत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली महिलाओं को रिवॉर्ड पॉइंट या किसी लकी ड्रॉ के नाम पर उनके बैंक अकाउंट से राशि का गबन भी किया जाता है। कभी कभी किसी प्रकार का अज्ञात लिंक भेजकर ओटीपी की जानकारी हासिल कर महिलाओं के साथ वित्तीय धोखाधड़ी भी की जाती है। परंतु डिजिटल वित्तीय साक्षरता के बुनियादी नियमों का पालन करके महिलाएं डिजिटल फ्रॉड को प्रभावी ढंग से रोक सकती हैं। जैसे उन्हें अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी के द्वारा इनाम का लालच दिए जाने पर

भी किसी को ओटीपी नहीं बताना, किसी प्रकार का अज्ञात लिंक डाउनलोड ना करके वे स्वयं को और अपने परिवार को किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचा सकती हैं। भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग कर और तत्काल सहायता नंबर 1930 पर कॉल करके वह वित्तीय धोखाधड़ी से बच सकती हैं। वित्तीय साक्षरता सिर्फ एक कौशलता से कहीं अधिक एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो जीवन को आर्थिक रूप से सक्षम करने के साथ साथ महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित कर वित्तीय कठिनाइयों को समझकर एक उद्यमी के रूप में व्यवसाय शुरू कर रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता रखने के साथ साथ अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र के समग्र कल्याण में योगदान दे सकती हैं। किसी महापुरुष का कथन है कि यदि किसी भी कार्य को करने के लिए उससे पूर्व उसकी प्लानिंग कर ली जाए तो सफलता 90% सुनिश्चित हो जाती है तथा अनावश्यक कार्य

0: रुकर रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता रखने के साथ साथ अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र के समग्र कल्याण में योगदान दे सकती हैं। किसी महापुरुष का कथन है कि यदि किसी भी कार्य को करने के लिए उससे पूर्व उसकी प्लानिंग कर ली जाए तो सफलता 90% सुनिश्चित हो जाती है तथा अनावश्यक कार्यों में ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती। यही कथन धन के नियोजन पर भी लागू होता है। छोटे छोटे धन के प्रबंधन आश्चर्यजनक लाभ देने में सहायक होते हैं। आइए हम महिलाएं अपने भविष्य की बागडोर को स्वयं अपने हाथ में लें, क्योंकि बचत, निवेश और सही विचार बनेंगे नारी के जीवन के आधार। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी के सुखद भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद।
1: उड़ान बाकी है, परिंदों में अभी जान बाकी है, मंजिलें तो मिल ही जाएगी एक दिन, अभी तो हौसले का इम्तिहान बाकी है। सखियों, यही प्यारा संदेश दिया है हमारी वार्ताकार श्रीमती गुंजन चोपड़ा ने। तो बहनों, हम महिलाओं के हौसलों की उड़ान जब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम आर्थिक रूप से सजग और आत्मनिर्भर न बन जाए। और इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: खुद की मेहनत से अब तकदीर को बदलना है, बनकर आत्मनिर्भर सफलता के हर शिखर पर चढ़ना है। न रुकना है, न थकना है, बस आगे बढ़ते जाना है। अपनी पहचान बनाकर अब लखपति दीदी कहलाना है।
1: बहुत सुंदर खूबसूरत पंक्तियां सुनाई तुमने। और सच कहूं तो हमारा अगला विषय भी कुछ ऐसा ही है, उम्मीदों और हौसलों की उड़ान भरता हुआ। केवल आर्थिक आजादी की बात करना ही पर्याप्त नहीं है, जैसा कि अभी हमने बताया कि महिलाओं को आर्थिक आजादी, उसका अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए अवसर और सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की है, जिनमें से लखपति दीदी योजना एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: बिल्कुल रेखा, और इस योजना का नाम सुनते ही मन में एक सकारात्मकता आ जाती है ना, कि लखपति दीदी ये शब्द कहते हैं सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि ये हमारी सभी बहनों का गौरव है जो खुद के दम पर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। और रेखा, अक्सर हमारी बहनें जो घर परिवार को देखो संभाल रही है और संभालने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि भी अपनी छिपी हुई प्रतिभा को भी वो पहचान नहीं पाती। लेकिन कहते ना, अब धीरे धीरे जमाना भी बदल गया है और आज की नारी है जो आत्मनिर्भर भी बन रही है। और रेखा, सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उनकी सालाना आमदनी कम से कम 1,00,000 रुपए की हो जाए।
1: बिल्कुल सपना, लेकिन कई बार ऐसा मन में भी आता है ना कि ऐसा क्या हो सकता है कि हम भी लखपति बने, क्या कोई जादू की छड़ी हो और घुमाओ और हम लखपति
0: बन जाए।
1: पर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे पहले जरूरत है कि हमारी अपनी मेहनत, हमारा हुनर और साथ में सरकार का पूरा सहयोग, तभी संभव होता है ये।
0: हाँ रेखा, और इस योजना में बहनों को सिर्फ लोन या पैसा ही नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें हुनर सिखाया जाता है, जैसे कि भी एलईडी बल्ब बनाना, सिलाई कढ़ाई करवाना, मशरूम की खेती, ड्रोन चलाना जिसे हम नमो ड्रोन दीदी भी कहते हैं, और साथ में छोटे मोटे बिजनेस को कैसे संभालना, इन सब की सबको सिखाया जाता है।
1: और सपना, एक बात ये भी है कि हमारे आसपास के इलाके में हमारी बहनें आज हस्तशिल्प और पापड़ भुजिया जैसे काम भी पहले से कर रही हैं, तो वो भी इसका फायदा उठा सकती है।
0: बिल्कुल, अरे क्यों नहीं रेखा, यही तो इस योजना की सबसे खूबसूरत बात है। अगर कोई बहन पहले से कोई काम कर रही हो तो उसे अपना काम को बड़ा करने के लिए तकनीकी सहायता, डिजिटल बैंकिंग की समझ और बाजार से जुड़ने का

0: कभी मिलता है, यानी जो सामान आप घर पर बना रही हो उसे बड़े बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता सरकार खुद तय करती है।
1: हाँ, यानी हुनर हमारा और उसे उड़ान देगी योजना।
0: बिल्कुल
1: सपना, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इस योजना के तहत देश में 3 करोड़ बहनों को जो लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था ना, वो मतलब पूरा होता दिख रहा है। कितनी बड़ी बात है ना कि हमारी गाँव या शहर की जो भी बहनें हैं वो अब आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही है।
0: बिल्कुल रेखा, जब एक महिला के हाथ में पैसा आता है ना तो वो सबसे पहले अपने बच्चों की पढ़ाई पर और परिवार की सेहत पर खर्च करती है। यानी एक महिला का लखपति बनना पूरे परिवार को आगे बढ़ाना है।
1: तो जो बहनें इस योजना से जुड़ना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले अपने इलाके की किसी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। अगर आप पहले से जुड़ी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र या स्वयं सहायता समूह के मुखिया से मिलकर इसके बारे में जानकारी ले सकती है। इसके अलावा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात बताई रेखा, यानी रास्ता बिल्कुल साफ है, बस कदम बढ़ाने की देर है। मुझे तो वो दिन दूर नहीं लगता जब हमारी हर दूसरी बहन गर्व से कहेगी कि हाँ मैं लखपति दीदी हूँ।
1: सपना, तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। बहनों, अपने हुनर को पहचाने, आत्मनिर्भर बनिए और देश की तरक्की में हाथ बटाइए।
0: बिल्कुल रेखा, तो चलिए बातों का ये मीठा सफर तो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त कह रहा है कि कानों में थोड़ा संगीत का रस घोला जाए। क्यों रेखा, तो चलिए गीत संगीत की ओर।
1: जरूर।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: सखियों, जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, इसलिए तो इसे जिंदगी कहते हैं। तो बस इस जिंदगी को हंसते हंसाते गुजारे और दो पल हमारे साथ बिताए, क्योंकि आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले।
1: तो बहनों, फिर आपसे मुलाकात होगी और आज का ये हसीन सफर यहीं तक। आज्ञा दे आपकी अपनी सखी सपना व्यास को
0: और रेखा आचार्य का प्यार भरा नमस्कार।

0: ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrav were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandedh, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़कर के रहे।
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की

0: accused each other of violating the ceasefire. In a statement, United States Central Command said Iran had been given an opportunity to uphold the ceasefire, but instead launched a one-way attack drone that struck Panama-flagged oil tanker MT Kiku. Iran's foreign ministry, meanwhile, said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as the treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defence production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
3: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है।

0: C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन

0: इन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्र

0: ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ढोलामारू सेना से बोल रहे हैं। अभी इस वक्त दिन के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

इश्क नहीं आसान, ये फिल्म थी और आवाज़ अनवर की थी। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

आसपास। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, युगल वजह थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अगला गीत सुनते हैं और ये आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म आरजू। और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

चंबल की कसम, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत खयाम का था। अगला गीत लिया है हमने फिल्म नसीब से, और ये आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह, उषा मंगेशकर और आशा भोसले। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

ये फिल्म थी नसीब, आवाजें रफ़ी किशोर और शैलेंद्र हादी की थी। इस गीत के साथ ये फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। हम आपसे हमारी अगली सभा में मिलेंगे शाम 5 बजे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: उन्होंने कहा कि भारत सेशेल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। सेशेल्स के साथ यूपीआई लागू करने का समझौता भी हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि जन औषधि योजना पर हुए समझौते से सेशेल्स के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर

0: बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान सोना न खरीदने और विदेशी दौरे न करने की अपील पर सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय एक नए अवतार में भारत का भाग्य गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 5 बजने को है। हमारी आज की दूसरी और सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सबसे पहले प्रस्तुत है हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ योर इंडिपेंडेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड द पीपल ऑफ सेशल ऑन दिस स्पेशल ओकेजन।
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरबाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर

0: यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज जलडब्रू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच दो T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के इस समय 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी

0: हर सुबह एक नई उम्मीद जगाती है, हर सांस हमें जीवन की कीमत बताती है। जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वही हर मुश्किल में अपनी पहचान बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौतम।
1: और मैं हूं कुमकुम। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि एक बेहतर जीवन, सकारात्मक सोच और मजबूत समाज की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। आज का हमारा विषय है सामुदायिक योग से लाभ।
0: दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने आसपास का माहौल देखिए। सुबह की शुरुआत होते ही लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई की चिंता, युवाओं को कैरियर की, नौकरी करने वालों को अपने कार्य की और बुजुर्गों को स्वास्थ्य की। ऐसी तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर हमें अपने शरीर और मन दोनों की अनदेखी कर देती है।
1: आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, चिंता और असंतुलित दिनचर्या आम बात हो गई है। ऐसे समय में योग एक ऐसी विधा है जो हमें स्वयं से जोड़ती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और मन को शांत बनाती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, योग केवल कुछ आसान तक ही सीमित नहीं है। योग का अर्थ है जोड़ना स्वयं को अपने शरीर से, अपने मन से और अपने आसपास के समाज से जोड़ना। यही कारण है कि योग को केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि जीवन जीने का एक कला भी माना जाता है।
1: और जब लोग एक साथ मिलकर योग करते हैं तो उसे सामुदायिक योग कहा जाता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य सुधारने का माध्यम नहीं होता बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का अवसर भी बन जाता है।
0: और दोस्तों, कभी आपने किसी पार्क में सुबह के समय सामूहिक योग कार्यक्रम देखा है? अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही, स्वस्थ और संतुलित जीवन। यह दृश्य अपने आप में बहुत प्रेरणादायक हो जाता है।
1: और गौतम, आज के समय में जहां लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े होते हैं, वहीं वास्तविक जीवन में कई बार अकेलापन महसूस करते हैं। सामुदायिक योग इस दूरी को कम करता है।
0: कुमकुम, सामुदायिक योग का सबसे पहला लाभ है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। नियमित योग अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है।
1: योग का एक और महत्वपूर्ण लाभ है गौतम, शरीर और स्वास्थ्य के बीच बेहतर समन्वय। योग के दौरान किए जाने वाले प्राणायाम और स्वास्थ्य संबंधी अभ्यास हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं।
0: और दोस्तों, यदि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो योग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज तनाव केवल बड़ों की समस्या ही नहीं, विद्यार्थी, युवा, यहाँ तक कि बच्चे भी विभिन्न प्रकार के दबावों का सामना कर रहे हैं।
1: आज के टाइम में सामाजिक जुड़ाव भी उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। सामुदायिक योग लोगों को ये एहसास कराता है कि स्वस्थ जीवन जीना बहुत जरूरी है।
0: कुमकुम, भारत की योग परंपरा हजारों साल पुरानी है। योग हमारी संस्कृति,

0: और जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज योग की लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं, दुनिया के अनेक देशों ने भी योग को अपनाया है।
1: और यही कारण है कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन और संतुलित जीवन शैली का संदेश देने का अवसर है।
0: और तो और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन लाखों योग लोग एक साथ योग करते हैं। बड़े बड़े मैदानों, पार्कों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह दृश्य वास्तव में सामुदायिक योग की शक्ति को दर्शाता है।
1: और जब हजारों लोग एक साथ योग करते हैं तो वहाँ सिर्फ आसन नहीं किए जाते, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। ये संदेश जाता है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति प्रगति से भी बहुत जुड़ा हुआ है।
0: और दोस्तों, आज का युवा भी योग के महत्व को समझ रहा है। पहले योग को केवल बुजुर्गों से जोड़ा जाता था, लेकिन अब युवा वर्ग भी इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहा है।
1: क्योंकि गौतम, युवा समझ चुके हैं कि बेहतर एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन के लिए योग बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पढ़ाई हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर जीवन की चुनौतियाँ हों, योग हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
0: कुमकुम, यदि हम ग्रामीण भारत की बात करें तो वहाँ भी योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। गांवों में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बना रहे हैं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
1: तो दोस्तों, सामुदायिक योग हमें ये संदेश देता है कि मिलकर स्वस्थ बने, मिलकर आगे बढ़ें और मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें।
0: तो क्यों ना आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने जीवन में योग को स्थान देंगे, अपने परिवार और अपने मित्रों को इसके प्रति जागरूक करेंगे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: क्योंकि योग सिर्फ शरीर को नहीं जोड़ता, योग लोगों को जोड़ता है, विचारों को जोड़ता है और जीवन को एक नई दिशा देता है।
0: तो दोस्तों, इसी सकारात्मक विचार के साथ अब समय हो गया है कार्यक्रम के पहले मधुर गीत का।

0: शहर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है क्विज सेगमेंट का, जहां रोज हम आपसे प्रश्न पूछते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, जीके रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, और इन दो सवालों के जवाब हम आपको कार्यक्रम के

0: में देंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि जून 2026 में स्कॉटलैंड के किस शहर में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। जून 2026 में स्कॉटलैंड के किस शहर में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया।
1: दोस्तों, हमारा आज का दूसरा सवाल है, हेलिना मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है। दोस्तों, मैं अपना सवाल फिर से पूछता हूं, हेलिना मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है। तो दोस्तों, इन दो सवालों के जवाब आप ढूंढ कर रखिएगा, जिसके जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि आज की दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है समय। सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक हम किसी न किसी काम में, जिम्मेदारी में उलझे ही रहते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी कैरियर की चिंता, कभी रिश्तों की परेशानियां और कभी भविष्य को लेकर अनिश्चितता। धीरे धीरे दोस्तों, ये सब हमारे मन पर असर डालने लगते हैं।
0: और दोस्तों, अक्सर हम अपने शरीर की थकान को तो समझ लेते हैं, लेकिन अपने मन की थकान को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन असल में हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य।
1: लेकिन कुमकुम, यहाँ समझने वाली बात यह है कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। थोड़ा तनाव हमें मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है।
0: बिल्कुल गौतम, ज्यादा तनाव के कारण लेकिन नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन या फिर ध्यान लगन में परेशानी, ये सब समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते अपने मन में अपनी मन की स्थिति को समझें और उसे संभालने की कोशिश करें।
1: तो दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपने मन की बात को स्वीकार करना। कई बार हम परेशान होते हैं लेकिन किसी से बात नहीं करते। हमें लगता है कि हम अपनी परेशानी बताना हमारी कमजोरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मानसिक मजबूती की निशानी है।
0: और इसके अलावा हमें डिजिटल बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा है लेकिन पूरा जीवन नहीं है। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, अपने परिवार के साथ बिताएं, उनके साथ बातचीत करें और खुद के साथ समय बिताना भी मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है।
1: और तो और दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योग और ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश की प्राचीन परंपराओं में योग को केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं बल्कि मन और शरीर को संतुलन बनाने का माध्यम माना गया है।
0: आज का युवा बहुत सारे अवसरों के बीच आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है।
1: क्योंकि असली सफलता सिर्फ उपलब्धियां हासिल करना ही नहीं बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में है। जब मन शांत होता है तो सोच बेहतर होती है और फैसले भी बेहतर हो जाते हैं।
0: दोस्तों, याद रखिए, परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटना है ये हमारे हाथ में होता है। मजबूत मन वही होता है जो मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखता है।
1: तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देंगे जितना अपने शरीर को देते हैं। अपनी भावनाओं को समझेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और जीवन को सकारात्मकता में जगह देंगे।
0: क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की नींव है, और जब देश का हर व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होगा तभी समाज भी मजबूत बनेगा।
1: इसी सकारात्मक सोच के साथ अब समय हो गया है एक और गीत का, जो हमें कुछ पल सुकून देगा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ।

0: मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सुनकर
1: मैं आकाशवाणी हूँ 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों, पढ़ाई का दबाव, उम्मीदों का बोझ और हर दिन परफेक्ट दिखने की दौड़, इन सब के बीच दिमाग भी थकने लगता है। और अभी ही हमने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन की बात की ही थी। और मज़ेदार बात यह है कि कई बार हम थकान को पहचानने के बजाय उसे नॉर्मल मान लेते हैं।
1: इसी माहौल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक अलग ही तरह की हवा लेकर आता है दोस्तों, जहां ध्यान सिर्फ मार्क्स या रैंक पर नहीं बल्कि उस जज्बे पर भी जाता है जो किसी बच्चे को मुश्किलों के बीच भी कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ाता है।
0: जब अधिकांश बच्चे स्कूल की घंटी बजने का इंतजार कर रहे होते हैं, वीडियो गेम में नया लेवल पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विज्ञान में नए प्रयोग कर रहे होते हैं, कला के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे होते हैं, या फिर कठिन परिस्थितियों में भी अद्भुत साहस का परिचय दे रहे होते हैं।
1: कुमकुम, ऐसे ही बच्चों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार केवल एक ट्रॉफी या प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अपने सपने और उपलब्धियां नहीं की जाती।
0: दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, ये तो हम जानते हैं। यहाँ करोड़ों बच्चे हैं जिनमें हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेष प्रतिभा तो छुपी हुई है।
1: कई बार ऐसी प्रतिभा दूर दराज के गांव में होती है जहां मंच कम होते हैं। कई बार कोई बच्चा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद असाधारण कार्य कर देता है, लेकिन उसकी कहानी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। दोस्तों,
0: ऐसे बच्चों को पहचान देना, उनका उत्साह बढ़ाना और पूरे देश के सामने उनकी उपलब्धियों को लाने के उद्देश्य से ही इस पुरस्कार की परंपरा को और सशक्त बनाया गया।
1: दोस्तों, ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। इन क्षेत्र में शामिल है नवाचार जो कि इनोवेशन, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, खेल, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक बहादुरी और नेतृत्व में दिया जाता है।
0: यानी कोई बच्चा कोई ऐसा काम करता है जो समाज के लिए प्रेरणादायक है तो वो इस सम्मान का हकदार बन सकता है।
1: आज की दुनिया में अक्सर सफलता को आंकड़ों, रैंक और परीक्षा से जोड़कर देखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बताता है कि सफलता के रास्ते बहुत हैं। अगर किसी बच्चे को संगीत पसंद है तो वो आगे बढ़ सकता है। अगर किसी को विज्ञान में रुचि है तो वो चमक सकता है। अगर किसी समाज सेवा करना चाहता है कोई बच्चा, तो वो सम्मान

0: पा सकता है। ये पुरस्कार बच्चों को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है।
1: लेकिन दोस्तों, ये बात भी समझने की है कि किसी भी पुरस्कार विजेता बच्चे के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, उसके पीछे उसका पूरा परिवार का विश्वास, शिक्षकों का मार्गदर्शन और समाज का सहयोग भी होता है। जब माता पिता बच्चों के सवालों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी रुचियों को समझते हैं और उन्हें प्रयोग करने की स्वतंत्रता देते हैं, तब प्रतिभाएँ विकसित होती है।
0: इसलिए बच्चों को प्यार, भरोसा और आज़ादी दीजिए। हर छोटी छोटी बात पर डांटेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे तो फिर वो भी बोलेंगे कि बच्चे की जान लेगा क्या।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
6: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
6: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
5: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
6: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
5: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
6: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
5: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
6: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
5: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
6: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
7: चलिए दोस्तों, अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, घड़ी बंद है, इंटरनेट नहीं चल रहा है और GPS भी गायब है, और कोई आपसे पूछ ले कि अभी कितने बजे हैं, तो आज तो शायद हम कंधे उचकाकर कह देंगे कि हमें तो नहीं पता।
8: लेकिन दोस्तों, लगभग 300 साल पहले लोग ऐसा नहीं करते थे। तब न स्मार्ट वॉच थी, न मोबाइल, न कोई ऐसा ऐप जो टाइम बता सके। फिर भी लोग समय बता देते थे, सूर्य की चाल समझते थे, तारों की स्थिति का अनुमान लगाते थे, यहाँ तक कि ग्रहों की गतिविधियों का भी अध्ययन रखते थे।
7: और ये सब होता था जयपुर के जंतर मंतर की मदद से, एक ऐसी जगह जहाँ विज्ञान किताबों में बंद नहीं था बल्कि आसमान के नीचे खुला खड़ा था।
8: दोस्तों, जंतर मंतर का जादू अंधविश्वास का नहीं, विज्ञान का है। जंतर शब्द संस्कृत के यंत्र से निकला है, जिसका मतलब है उपकरण, और मंतर शब्द मंत्रणा या गणना से जुड़ा है, यानी जंतर मंतर का अर्थ हुआ गणना करने वाला यंत्र। और यह यंत्र ऐसे वैसे नहीं थे दोस्तों, ये पूरे पूरे भवन जितने बड़े होते थे।
7: अब सवाल उठता है कि आखिर किसी को इतनी बड़ी बड़ी घड़ियां या फिर यंत्र बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। इस कहानी के नायक हैं सवाई जय सिंह द्वित्य। वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्र के प्रेमी थे। उन्हें लगा कि उस समय उपलब्ध खगोलीय गणनाओं में कुछ गलतियां हैं। अब अधिकांश लोग क्या करते, किताब बंद कर देते और आगे बढ़ जाते। लेकिन सवाई जय सिंह ने सोचा कि गलती है तो उसे ठीक करते हैं, और यहीं से शुरू हुआ जंतर मंतर का सफर।
8: दिलचस्प बात यह है कुमकुम कि सिर्फ एक जंतर मंतर ही नहीं बनाया गया था। सवाई जय सिंह ने अलग अलग शहरों में वेदशालाएं बनवाई, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। इनका उद्देश्य था देश के विभिन्न स्थानों से खगोलीय अवलोकन करना, यानी यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक नेटवर्क था, आज की भाषा में कहें तो 18वीं सदी का ऑफलाइन रिसर्च नेटवर्क।
7: और मजेदार बात यह है गौतम कि ये इतनी सटीक थी कि हमको सैकड़ों में के स्तर तक मापा जा सकता था। अब जरा तुलना कीजिए कि हमारी घड़ी बंद हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये घड़ी पिछले लगभग 300 वर्षों से बिना बैटरी के काम कर रही है।
8: और दोस्तों, जंतर मंतर को वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को के अनुसार जंतर मंतर सिर्फ एक वेदशाला नहीं है, बल्कि ये 18वीं शताब्दी के भारत की वैज्ञानिक सोच, खगोलीय ज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत संगम है।
7: और ऐसे ज्ञान की यात्रा में अगर जिज्ञासा हमारा रास्ता है तो विज्ञान हमारा साथी है।

0: जंतर मंतर में कभी ग्रहों और तारों की चाल पर नजर रखी जाती है, तो आज दुनिया की नजर एक और तरह की गति पर चलती रहती है, और वो है अर्थव्यवस्था की गति, विकास की गति और वैश्विक सहयोग की गति। फर्क बस इतना है दोस्तों कि तब गणनाएं पत्थर के यंत्रों से होती थी और आज चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती है। इन्हीं मंचों में सबसे महत्वपूर्ण है G20।
1: दोस्तों G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। वर्ष 1997 से 98 में एशियाई वित्तीय संकट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई। तब यह समझ आया कि दुनिया अब अकेले अकेले नहीं चल सकती।
0: इसी सोच के साथ 1999 में G20 की स्थापना हुई। G20 में 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। दोस्तों ये सदस्य मिलकर दुनिया की लगभग 85% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं, करीब 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभालते हैं और लगभग 60% वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
1: दोस्तों G20 देश के बीच नीतिगत सहमति बनाकर दिशा देने का काम करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य

0: वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक संकटों को रोकना में सहायक रहना।
1: दोस्तों, आपको याद होगा कि 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी। इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारत ने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रमुखता दी।
0: दोस्तों, इसके अलावा वर्ष 2021 में रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने औपचारिक रूप से 15% ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का समर्थन किया।
1: यानी साथियों, G20 सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं है, बल्कि वो मंच है जहां दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियां पर चर्चा होती है। क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी समस्याओं का हल कोई जादू तो नहीं है, कोई जादू से नहीं निकलता, और ना ही सब कुछ बदल जाता है एक पल में।

0: तो चलिए दोस्तों, अब इस कार्यक्रम के अंतिम गीत के बाद वक्त हो चला है आपको रोजगार सूचना देने का। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ये भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट के माध्यम से आयोजित की जा रही है। BSNL द्वारा जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 3 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
1: तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ऑफिशियल

0: वेबसाइट externalexam.bsnl.co.in पर जारी हो गया है। जल्दी से जाइए, अप्लाई करिए और फिर करिए एग्जाम की तैयारी।
1: और अब इसी के साथ हमारे क्विज के प्रश्नों के जवाब जानने का भी वक्त हो चला है। आज का हमारा पहला प्रश्न था कि जून 2026 में स्कॉटलैंड के किस शहर में महर्षि सुश्रुत की ब्रोंज प्रतिमा यानी कि कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसका सही जवाब है एडिनबर्ग।
0: और दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल था, हेलिना मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया था, जिसका सही जवाब है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन।
1: अब इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला है हमारा आप सभी से विदा लेने का।
0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आज की हमारी बातचीत ने आपके विचारों को एक नई दिशा दी होगी और आपके चेहरे पर मुस्कान लाई होगी।
1: इसी के साथ मैं थी आज की आपके साथी कुमकुम।
0: और मैं था गौतम।
1: और हम दोनों का आप सभी को नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी कुमकुम स्वामी और साथ थे गौतम गौड़। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों में आज शाम 7 बजे हम आपको सुनाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण।

इसके अलावा आज शाम 6:05 पर आपके अपने आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुनेंगे फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही कलाकार कार्यक्रम। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे थोड़ी देर में शाम 6 बजे और इसके अलावा आप समाचार सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 बजे News@9। रात्रि 11 बजे आप हिंदी में समाचार सुन सकते हैं, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 पर हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से, और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:45 पर।

आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के इस समय 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने

0: इंग्लैंड के साथ दो T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर कुमार के गाए चंद फिल्मी गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत में हम उस कलाकार का नाम आपके समक्ष रखा है जिनके गाने सदा सदा हमारे कानों में गूंजते रहे हैं और जिनकी आवाज में शरारत भी थी, दर्द भी था, रोमांस भी था और जिंदगी का उत्सव भी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में किशोर कुमार का ये पहला गीत।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म का नाम था आराधना। जी हाँ श्रोताओं, किशोर दा की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि किरदार को जी लेते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असल में नाम आभास कुमार गांगुली था और अभिनय से शुरुआत करने वाले इस कलाकार ने आगे चलकर पार्श्व गायन की दुनिया में इतिहास रच दिया। और अब हम आपको सुनवाते हैं इनका गाया ये अगला गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, किशोर कुमार की एक खास बात थी, वे हर मूड के गाने गा सकते थे। रोमांस हो, दर्द हो या फिर शरारत, हर एहसास उनकी आवाज में जिंदा हो जाती थी। और अभी आप सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। और अगला गीत हम आपको आपको सुनवाएं, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में एक ही कलाकार में आज किशोर कुमार के गाए चंद फिल्मी गीत। तो श्रोताओं, कहते हैं कि संगीत समय से भी लंबी उम्र जीता है। आज भी किशोरदा के गीत नई पीढ़ी उतने ही प्यार से सुनती है जितना पुरानी पीढ़ी सुनती थी। आइए सुनते हैं एक ऐसा सदाबहार रोमांटिक गीत जो आज भी सबके कानों में गूंजता है।

ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में। श्रोताओं, जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, और जब बात एहसासों को आवाज देने की हो तो किशोर कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। अब पेश है एक ऐसा गीत जो जीवन की सच्चाई को बेहद खूबसूरती से कहता है।

सफर फिल्म के इस गीत के बाद हम बस यही कहेंगे कि हर कलाकार अपनी कला से अमर होता है। किशोर कुमार आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ हर दिन, हर पल, हर रेडियो स्टेशन और हर दिल में गूंजती रहती है। आइए सुनते हैं चलते चलाते एक और यादगार गीत।

0: होती और कुछ आवाजें कभी भूली नहीं होती। किशोर कुमार की आवाज भी ऐसी ही है, हर दौर की हर दिल की आवाज। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: चाहे तो क्या कीजिए,
0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में एक ही कलाकार के रूप में आज किशोर कुमार के गाए चंद फिल्मी गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के इस समय 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है।
3: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने पिछले दिनों पश्चिम एशिया में बने युद्ध के हालात के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख करते हुए योजनाओं की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी दूसरे लोगों तक साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने AI टूल्स को देश की संस्कृति और भारतीय ज्ञान तथा भाषाओं के संरक्षण के काम में लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। मन की बात कार्यक्रम सुनने को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में

0: अपने निवास पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये कार्यक्रम सुना। वहीं पाली, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज रिफाइनरी का अवलोकन किया। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल का मुआयना भी किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी आगामी 4 जुलाई को इस नए टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के तहत बालोतरा जिले में 7 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया की सफल बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में गिनी जाती है। वर्तमान में यहां बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। आज अलवर के सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये कार्यशाला ऐसे समय आयोजित हुई है जब सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। श्री यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। कार्यशाला में वन मंत्री संजय शर्मा, देशभर के बाघ संरक्षण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, वन अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रधान वन्य जीव प्रतिपालक उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लक्ष्य सरकारी प्रयासों के साथ जन भागीदारी से संभव है। श्री बिरला आज कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र में रेंडल पार्क में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, गली, पार्क और मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ पौधरोपण और उनके संरक्षण का संकल्प ले तो कोटा सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने और पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
2: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाएं। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुकूल दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर, गली, गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ने रेंडल पार्क में उपलब्ध

0: खेल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोटा में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के सुमेरपुर में मॉनसून के आगमन से पहले युवाओं ने बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार की है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देसी प्रजातियों जामुन, अमलातस, कुमटा, खेर, देसी बबूल, गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है, जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश सहित देश भर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत देश को पोलियो मुक्त

0: गया है, जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: प्रदेश सहित देशभर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में 59,000 से अधिक बूथों पर पहले दिन ये दवा पिलाई गई। अगले 2 दिन अब स्वास्थ्यकर्मी आज पोलियो की दवा से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों में फिर से कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। उधर चूरू में दिनभर की तेज गर्मी के बाद आज शाम को बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं सिरोही और आबूराज में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले भर में आज पल्स पोलियो राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। 3 दिन के इस अभियान में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी ट्रांजिट बूथ स्थापित किए गए। आज दवा पीने से छूटे बच्चों को अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन मान क्लब फुटबॉल मैदान में रखा गया, जहां प्रभारी सचिव पीसी किशन और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योगाभ्यास तथा ध्यान शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ स्टेट बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने योगासन किए। इसी तरह केंद्रीय कारागार श्यालावास में भी योगाभ्यास तथा ध्यान सत्र रखा गया, जिसमें बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं का 3 दिन तक मुख्यालय के प्रभारियों के दलों द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवाइयों, उपकरणों की उपलब्धता और प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया गया। नशा मुक्ति दिवस पर जिले में जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुनर्वास के जरिए नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जिले भर में इन दिनों शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविरों को लेकर आमजन में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इन शिविरों में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ पचवारा नगरपालिका में आयोजित शिविर में बरसों से मुख्य बाजार की समस्या का हाथों हाथ समाधान होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसी तरह बांदीकुई, बसवा, सिकराय, महवा, मंडावर और लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किए।

0: गए। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में पिछले दिनों जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि और पर्यावरण संतुलन विषय पर किसान गोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संरक्षित और उर्वरक खेती की जानकारी प्रदान की, किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत दौसा जिले के 1300 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करेंगे। इनमें से 1150 से अधिक को रेल और 142 को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्मिकों से किसी भी आपात स्थिति में हर समय तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक वितरित किए गए। रीनीट यूजी परीक्षा 21 जून को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 4000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को सुचारू और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। जिला कलेक्टर ने नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में मुहर्रम पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पारंपरिक आयोजन हुए। कई जगह जुलूस की शक्ल में ताजिए निकाले गए। शाम को मातमी माहौल के बीच ताजियों को करबला में सुपुर्दे खाक किया गया। निर्जला एकादशी पर जिला मुख्यालय सहित जगह जगह धार्मिक गतिविधियां देखी गईं। दान पुण्य के आयोजन हुए। लोगों ने पानी, शरबत और पेय पदार्थों के साथ भंडारे लगाकर पुण्य कमाया। ज्येष्ठ महीने में जिले में मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी बरसात तो कभी तेज गर्मी ने जिलेवासियों को प्रभावित किया। इस दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों से कई जगह नुकसान भी देखा गया। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है छिंछा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा निजरिया ने साकार करण माय गांवारी भूमिका ने महत्व बताया है। सरिस्का माय भाग पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कयो बाघ संरक्षण में राज्यों रे अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश में 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माथे 5 साल तयरा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। समाचार रे साथे मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो है कि स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत समुद्रों लेर आकाश ताई बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी कयो के जून महीना में स्वदेशी C-295 विमान री पहली उड़ान रे साथ ही भारत विमानन हल्का में एक मोटी कामयाबी हासिल करी है। वर्णा कयो के आज देश में रोजगार रा मौका बद रिया है और आत्मनिर्भर भारत रो संकल्प मजबूत वे रियो है।
2: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करता कहो कि योग दिवस दुनिया भर में मनाई जो इस बार वो आयोजन 2,532 ठोड़ा माथे भी हो। भारत में करोड़ों लोग योग दिवस में भागीदारी करी। श्री मोदी लाडला दिना आथोनी एशिया में बनिया युद्ध रा हालात रे दौरान वारी अर्ज माथे देशवासियों रा समर्थन और सहयोग सारू आभारी जतायो।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़

शाम के इस समय 7 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद

0: महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक

0: जर्मनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी।

0: जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honoured with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast.

0: भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई

0: प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास-पास नहीं साथ-साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles president conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognises that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India